0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: एक बात पानी से सीखी जा सकती है, छोटी छोटी नदियां शोर मचाती हैं, परंतु महासागर शांत रहता है। ये कहना है भगवान गौतम बुद्ध का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा, सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: हर कोई कहता है कि ईश्वर नजर नहीं आता, लेकिन सच तो ये है कि संकट के समय कोई साथ नहीं देता, तब किसी न किसी रूप में भगवान ही साथ देता है। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा, सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: लोग कहते हैं कि पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। मैं कहता हूं कि ईश्वर पर विश्वास रखो, बुरा वक्त कभी नहीं आएगा। ये कहना है अज्ञात का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा। आज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि भगवद गीता एक बहुत सुंदर चीज हमें बताती है। ये हमें बताती है कि आप जीवन में कभी भी आपका रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, परंतु हमारे साथ एक छोटी सी परेशानी है कि हम रिजल्ट के लिए ही कार्य करते हैं और इसीलिए आगे जाके फ्रस्ट्रेशन मिलता है। जैसे कि किसान अपना खेत में बीज बो सकता है, परंतु वो वर्षा नहीं ला सकता। इसीलिए हम अपने कर्म को बहुत ईमानदारी से कर सकते हैं, परंतु जो रिजल्ट है वो भगवान फाइनली हमें देते हैं। इसीलिए मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूंगा, इसको हमेशा याद रखें कि डू योर बेस्ट एंड लेट कृष्णा डू द रेस्ट। हरे कृष्णा।

हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। हमें भगवत गीता एक बहुत सुंदर बात बताती है। वह हमें बताती है कि जिस प्रकार से एक गांव में बहुत सारे कुएं होते हैं, किसी कुएं में कपड़े धोते हैं, किसी में हम स्नान करते हैं, परंतु इन सारे कुओं का जो कार्य है एक नदी पूर्ण कर देती है। उसी प्रकार से अगर हम अपने जीवन में बहुत सारे लक्ष्यों को एक साथ लेकर चलेंगे तो हम भी इसी प्रकार से अलग अलग कुओं में जाना पड़ेगा, लेकिन अगर जीवन में एक लक्ष्य बनाकर उस पर पूरे फोकस से कार्य करें तो आप उसको बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए फोकस होना जीवन में बहुत आवश्यक है। हरे कृष्णा।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। जिंदगी को जीने की बातें करते हैं, खुश रहने वाली बातें हम आपके साथ साझा करते हैं और बहुत कुछ खास होता है इस सामुदायिक रेडियो स्टेशन के माध्यम से। ये सारी बातें जन जन तक हम पहुंचा रहे होते हैं। तो 01204060205 पर आप हमें कॉल कर बता सकते हैं कि आपको अपने शहर ग्रेटर नोएडा का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कैसा लगता है। इसके अलावा 90.8 FM@sharda.ac.in पर भी आप हमें मेल कर बता सकते हैं। जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए। जिंदगी और भी खूबसूरत हो जाती है जब हमारे साथ हमारे टीचर जुड़ जाते हैं, वो टीचर जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमें तराश रहे होते हैं, हमें एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी बातें वो हमसे साझा कर रहे होते हैं, हमें बता रहे होते हैं। पढ़ाने की जो बातें वो मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं कि BGMC की पास आउट स्टूडेंट हमारे साथ आज जुड़ रही हैं और उनका जो नाम है वो है प्रियंवदा। 2016 में इन्होंने यहाँ से कोर्स किया जिसका नाम है BGMC। तो प्रियंवदा, आपका फाइनली सुनो शारदा 90.8 FM पर बहुत बहुत स्वागत है।
3: थैंक यू सो मच सर।
1: कैसा फील करें, काफी टाइम के बाद आप अपने कैंपस में आए हैं और अपने स्कूल में आए हैं, अपने टीचर से आप मिल रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं?
3: सर, स्कूल वापस आके तो अच्छा लगता ही है, टू मीट ऑल द ओल्ड टीचर्स हु बीन देयर। कुछ टीचर्स तो आई थिंक हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम हियर एंड बाकी जो टीचर्स यहाँ पे, आई ऑलवेज हैड अ वेरी स्पेशल रिलेशन विद ऑल ऑफ देम एंड आई यूज टू वर्क अ लॉट। प्रैक्टिकली 3 साल मैंने फैकल्टी रूम से ही अपनी पढ़ाई की।
1: ओह ग्रेट,
3: बिकॉज वहाँ पे आई यूज टू बी द एडिटर फॉर द न्यूज़पेपर आल्सो, शार्दन्स की।
1: एक्सीलेंट,
3: तो मैं प्रैक्टिकली वहीं पे रहती थी।
1: मुझे यूं कहें कि मैं बहुत चक्का क्यों रह गया, इसके पीछे एक वजह है कि मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि उनको पता ही नहीं होता कि फैकल्टी रूम कहाँ है। मतलब आपने वहाँ अपनी कुर्सी जमा ली और लोगों से मिलते रहे, बात करते रहे, तो क्या क्या सीखा उस दौरान आपने?
3: सो फर्स्ट थिंग व्हाट आई लर्नड वाज द कमिटमेंट टुवर्ड्स योर वर्क, कि कुछ भी हो, जो भी काम हो, 100% वही उसी को करना है विद फुल फोकस एंड लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स। यहाँ पे टीचर्स आर वेरी वेलकमिंग फॉर स्टूडेंट्स टू मेक मिस्टेक्स एंड टू लर्न फ्रॉम इट, बिकॉज वो आई थिंक सबसे बड़ी सीख होती है। अगर अपनी मिस्टेक्स से आप खुद सीख के आगे बढ़ो, तो जो 3 साल मैंने यहाँ पे सीखा है, वो माई टीचर्स हैव बीन माई कॉन्स्टेंट सपोर्ट। इनफैक्ट ऑल माई टीचर्स, स्पेशली एक अभिषेक सर थे, अशरफ सर थे, इन्होंने ही मेरे को पुश किया था यहाँ से बॉम्बे जाने के लिए।
1: ग्रेट, तो उनका एक्सपीरियंस कैसा?
3: उनके साथ सर सीखने को बहुत मिलता था। उनकी क्लासरूम ऐसे क्लासरूम नहीं लगती थी, इट यूज टू बी मोर लाइक सिटिंग, टॉकिंग टू हिम, वर्किंग विद हिम। वो साथ में काम करते थे बच्चों के साथ एंड लाइक वहाँ से उससे सीख बहुत अच्छी मिलती थी। टू एक इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर जो क्लासरूम में होता है, तो लाइक आई थिंक फॉर मी वो बहुत अच्छा सीखने का एक्सपीरियंस था।
1: अभिषेक सर से तो फोन पे बातचीत हो जाती है?
3: हाँ, अभिषेक सर से भी आई हैव बीन इन कॉन्टैक्ट उनके साथ, पर वो थोड़ा सा वो मतलब आप वो बहुत पुश करते हैं स्टूडेंट्स को टू द पॉइंट कि अगर उनको पता है कि व्हाट इज द कैपेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट, वो कितना आगे जा सकता है, तो उनसे तो प्रैक्टिकली हमेशा डांट ही पड़ती रहती है कि तुम लोग कर क्या रहे हो, तुम लोग कुछ कर नहीं रहे हो।
1: अच्छा प्रेमदा, मुझे ये बताइए कि ये जो बहुत कुछ आपने सीखा अपने टीचर से, अपने कुलीग से, अपने दोस्तों से, मुंबई जब आप गए तो कितना काम आया? आपको लगा कि अगर काश मैं वहाँ ये सारी चीजें मिस कर देती तो मैं यहाँ जीरो से स्टार्ट करती? जो आपने सीखा यहाँ शारदा यूनिवर्सिटी से अपने टीचर से, कितना काम आया?
3: सब बहुत काम आया. इनफैक्ट मैं यहाँ पे जब मेरे को सेकंड ईयर में शारदन्स का एडिटर बनने का मौका मिला था सेकंड ईयर से, सो मैं 2 years आई वाज द एडिटर हियर. मेरे को एक तो टाइमलाइन, हाउ टू वर्क विद इन अ टाइम लिमिट, एंड स्टार्टिंग जब मैंने एडिटर से की थी तो वहाँ पे भी मैंने स्टार्ट एज अ राइटर किया था.
1: ग्रेट.
3: एंड आई रोट स्क्रिप्ट्स फॉर टीवी शोज, फिक्शन, नॉन फिक्शन टीवी शोज. एंड फिर मैं जब क्रिएटिव फील्ड में गई तो एक सर वो जो फाउंडेशन यहाँ बनी थी
1: वो वहाँ काम आया,
3: वो बहुत वहाँ काम आया. इनफैक्ट उसी पे बिल्ड हुआ है मेरा करियर.
1: एक्सीलेंट. ये आंसर में इसलिए जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे पास कुछ इंटर्न्स आते हैं, बहुत कैजुअली ले लेते हैं कि हम यहाँ से पास आउट हैं, इतने फैमिलियर हो चुके होते हैं कि वो उस चीज को सीखना या समझना नहीं चाहते. आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि बातें अभी शुरू हुई हैं, लेकिन इस मैसेज को मैं अभी इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि इस बात का संबंध आपकी बात से संबंध है. तो क्या उनको कहना चाहेंगे कि किस तरीके से वो यहाँ सीखें, किस तरीके से अपने आप को आगे लेकर जा सकते हैं, क्या एक मैसेज होगा?
3: मैं अगर वो मैसेज बताऊं सर, इट इज एक्चुअली कि शारदा में यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न. आपको जिस डायरेक्शन में सीखना है, जो सीखना है, टीचर्स आर वेरी सपोर्टिव हियर. एंड टू द फैक्ट कि आप स्टार्ट करके यू कैन बिल्ड योर फाउंडेशन,
1: राइट,
3: कि आगे व्हेन यू गो इन द वर्ल्ड यू कंटिन्यू योर करियर, इट रियली हेल्प्स. एंड यू कैन फॉल बैक टू योर फाउंडेशन एनी टाइम. वापस आके यू कैन रीलर्न एवरीथिंग फ्रॉम दीज टीचर्स. दे आर दैट ओपन टू यू एज अ स्टूडेंट. एज अ पास आउट, आई हैव पास्ड आउट इन 2016, बट टू स्टार्ट लर्निंग, बट टू कम बैक टू द रूट्स एंड जस्ट टॉक टू द टीचर्स एंड लर्न एंड लर्न, आई थिंक दिस इज द थिंग. क्योंकि लर्निंग, आई फील देर इज नो एज टू.
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये जो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, जब चाहे आप सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं. और अगर मैं समझता हूँ कि कहते हैं ना कि बुनियाद अगर आपकी मजबूत होगी तो उस पर आप इमारत को खड़ा कर सकते हैं. और आपकी बेशक इसमें कोई शक वाली बात है नहीं कि आपकी जो नींव मजबूत रही अपने टीचर्स के सानिध्य में, आपने बहुत कुछ नाम कमाया है, कमा रही है. सो लिसनर्स, मैं बताना चाहूंगा, मेरे साथ जुड़ी हुई है प्रोड्यूसर हैं, आप डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, आप हैं प्रेमवदा. तो प्रेमवदा के साथ बहुत सारी बातें हो रही है. ये परिचय मैं इसलिए बताना भूल गया, लगा अरे नहीं आपनी तो स्टूडेंट है. प्रेमवदा, यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और आपके साथ जो बातों का सिलसिला है लगातार जारी है. सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर शारदा 90.8 एफएम. मैं हूं गगन आपके साथ, मेरे साथ हैं प्रेमवदा जो कि प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर हैं. सो कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शारदा 90.8 FM.

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरु शारदा 90.8 FM। मीडिया क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है और कहा जाता है कि ये मजबूत स्तंभ है, और यहाँ स्टूडेंट आते हैं, अपने आप को आगे लेकर जाना चाहते हैं, बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि शारदा विश्वविद्यालय आपके लिए बाहें पसारे इंतजार कर रहा है। यहाँ का जो मास्कॉम है, यहाँ का जो स्कूल है, बहुत सारे स्कूल में यूँ कहें कि स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, और इसके बाद कहीं ना कहीं विदेश में, मुंबई में अपना योगदान दे रहे होते हैं। जैसे कि प्रेमवदा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि 2016 में यहाँ से पास आउट रही हैं। BGMC का कोर्स इन्होंने किया, इसके बाद मुंबई का सफर रहा, और उसके बाद जो मैं अभी थोड़ा ऑफ एयर मेरी आपसे बात हो रही थी, 2019 का रुख किया आपने विदेश की तरफ। ये फर्दर स्टडी के लिए आपको जाना हुआ या कुछ प्रोजेक्ट की वजह से जाना हुआ उधर?
1: 2019 में मैं गई थी जर्मनी फॉर अ 1 ईयर कोर्स इन फिल्म मेकिंग। मैंने अपना मास्टर्स इन फिल्म मेकिंग किया है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स को एज अ स्पेशलाइजेशन लेके। सो एक साल का मेरा कोर्स था वहाँ पे, मेट फिल्म स्कूल करके एक फिल्म स्कूल है बर्लिन में, एंड वहाँ से आई हैव डन माय 1 ईयर ऑफ मास्टर्स।
0: वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, वहाँ का माहौल कैसा है, यहाँ का कल्चर और वहाँ के कल्चर में कितना जमीन आसमान का फर्क महसूस करते हैं, किस तरीके से पढ़ाई होती है, प्रैक्टिकल पे जोर ज्यादा दिया जाता है या थ्योरी पढ़ाई जाती है?
1: वहाँ पे प्रैक्टिकल पे बहुत फोकस रहता है। इनफैक्ट एज अ फिल्म स्टूडेंट वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप फिल्म एज अ ऑडियंस ना देख के, एज अ स्टूडेंट देख के उस पर क्या अपनी क्रिटिक आप दे सकते हो, वो आपकी थॉट बिल्डिंग करवाते हैं वहाँ पे। कि एक फिल्म को अगर आप देख रहे हो नॉट एज एन ऑडियंस बट एज अ फिल्म मेकर, एज अ स्टूडेंट, तो टेक्निकलिटीज पहचानने का और डिफ्रेंशिएट करने का आप में वो टैलेंट एंड वो स्किल वो लोग डिवेलप वहाँ पे बहुत कराते हैं।
0: ग्रेट। उसके बाद फिर जो आप जर्नी रही, वो कैसी जर्नी रही वहाँ, मतलब आपने कुछ प्रैक्टिकल वहीं किए, वहीं काम किया, या उसके बाद बैक टू पवेलियन या हिंदुस्तान आना हुआ?
1: जब मैं बर्लिन में थी, इन 6 मंथ्स इनटू माय कोर्स, वहाँ पे तो लॉकडाउन लग गया था बिकॉज ऑफ द कोविड लॉकडाउन। तो फर्स्ट लॉकडाउन वाज, वहाँ पे नोबडी न्यू कि क्या है, कैसे है, क्लासेस कैसे होंगी, क्या होगा। सो कपल ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ पे मिलके, इनफैक्ट मेरा एक सीनियर है यहीं शारदा का, वो भी वहाँ पे था, हम दोनों ने मिलके एक फिल्म बनाई। एंड प्रैक्टिकल वी थॉट कि जो हमने अभी तक सीखा है 6 महीने में उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करें। सो स्कूल से वहाँ पे भी बहुत सपोर्ट मिला इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट वहाँ पे, इन टर्म्स ऑफ स्टूडियो, इन टर्म्स ऑफ वहाँ पे टीचर्स से डिस्कस करना उतनी नॉलेज वो कि हम ये फिल्म शूट करना चाहते हैं। सो वो सारा लेके वी मेड एक्सपेरिमेंटेड विद अ शॉर्ट फिल्म, 3 मिनट की फिल्म है, इट इज ऑन लाइक 1 टेक में हमने पूरी शूट करी है, एंड इट इज कॉल्ड कोल मीट। वो लेके भी टीचर्स वर वेरी सपोर्टिव, जब हमने फिल्म उनको प्रेजेंट करी तो उन्हीं का आइडिया था कि अब इस फिल्म को लेके तुम थोड़ा फिल्म मार्केट एक्सप्लोर करो और सीखो। तो वो भी वहाँ पे बैठ के किया था कि हम लोग ने फिल्म फेस्टिवल्स में ये फिल्म डाली, फिर सीखा कि कौन सी मार्केट में कैसी फिल्म चलती है, क्या होता है।
0: तो किस लेवल पर वो फिल्म गई आपकी?
1: वो फिल्म US में हैज वन अवार्ड्स एज बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट फिल्म, एंड आई वाज नॉमिनेटेड फॉर प्रोड्यूसर आल्सो इंडी फिल्म फेस्टिवल्स में इन लॉस एंजलिस। इंडिया में भी 2 फिल्म फेस्टिवल्स, ग्लोबल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और गोवा फिल्म फेस्टिवल में ये फिल्म हैज been selected and has won award.
0: Oh, great. बधाई हो। आप जिस तरीके से बातें कर रहे हैं और मुझे बता रहे हैं, बहुत सादगी से बातें अपनी रख रहे हैं, अदरवाइज तो लोग ये कहते हैं कि आसमान में उड़ रहे होते हैं। बहुत अच्छी तरीके से आप अपनी बातें हमसे शेयर कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा या इसके आसपास की मैं बात करूँ, इस एरिया में दिल्ली NCR में भी फिल्म फेस्टिवल्स होते रहते हैं, जैसे कि शारदा यूनिवर्सिटी में भी अभी KFF कुछ फिल्म फेस्टिवल हुआ था। ग्रेटर नोएडा के अलावा मैं बात करूँ, नोएडा में भी फिल्म फेस्टिवल है और आने वाले समय में यहाँ फिल्म सिटी आ रही है। तो क्या कभी कोई यहाँ अपनी फिल्म को लेकर आप आगे गए, एक बात, और दूसरी बात क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ जो फिल्म सिटी आ रही है कितना स्कोप होगा स्टूडेंट्स के लिए? 2 बातें।
1: सर, ये फिल्म तो अभी फेस्टिवल सर्किट में चल ही रही है, मैंने इसका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, क्योंकि माई एम वॉज टू अंडरस्टैंड इंटरनेशनल फिल्म मार्केट। इंडिया का तो लाइक बींग इन इंडियन एंड बींग स्टूडेंट हेयर वर्किंग इन बॉम्बे, थोड़ा बहुत आइडिया तो अंडरस्टैंडिंग फिल्म मार्केट की थी, बट बाहर का अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए दिस फिल्म पर्पज वॉज दैट। अब आफ्टर द फिल्म फेस्टिवल सर्किट नेक्स्ट ईयर फिर ये फिल्म हम लोग यहाँ पे नोएडा दिल्ली में थोड़ा उसको
0: एक्सप्लोर करेंगे
1: एंड इन टर्म्स ऑफ अगर यहाँ पे फिल्म सिटी आ रही है फॉर स्टूडेंट्स आई थिंक ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू लर्न द बेसिकली प्रोडक्शन फिल्म प्रोडक्शन जो हम पेपर पे सीखते हैं और जो हम फिल्म सेट पे सीखते हैं वो बहुत डिफरेंट होता है. एक फिल्म एटिकेट होती है जो सेट पे
0: राइट
1: एज अ प्रोफेशनल जब आप स्टेप इन करते हो फिल्म सेट पे वो आई थिंक क्लासरूम के बियॉन्ड एक लर्निंग है.
0: बिल्कुल सही कहा.
1: वो आप यहाँ पे ऑन पेपर विद टीचर्स जितना सीख सकते हो बट व्हेन यू स्टेप इनटू दैट फिल्म सेट और व्हेन यू स्टेप इनटू लाइक इन अ प्रोफेशनल फील्ड वो आई थिंक स्टूडेंट्स विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग जब यहाँ पे फिल्म सिटी बन जाएगी. इट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. तो मतलब सबको बॉम्बे नहीं भागना पड़ेगा.
0: दिल्ली एनसीआर में बहुत अच्छा स्कोप रहेगा स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ से पढ़ रहे हैं यहाँ से पास आउट हो रहे हैं. अभी आपने एक बहुत अच्छी बात छेड़ दी है प्रेमवदा कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है जब आप फील्ड में उतरते हैं मैदान में उतरते हैं डायरेक्टर के साथ काम कर रहे होते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं या कुछ और. उस समय बहुत सारी चीज़ें काम आती हैं कि नो डाउट जैसे आपने खुद कहा कि मैं यहाँ से सीख कर गई थी तो मुंबई में मुझे वो सारी चीज़ें काम आई. कुछ लोग तो जाहिर सी बात है कि अपने समय को ख़राब कर रहे होते हैं 3 साल या 4 साल व्हाटएवर जो भी है उसके बाद उनको ऐसा लगता है कि मुझे पका पकाया मिल जाए. एक तो धैर्य की कमी होती है दूसरा ये भी होता है कि वो सुनना पसंद नहीं करते. अगर टीचर जाहिर सी बात है टीचर के साथ भी ये प्रॉब्लम होती है कि स्टूडेंट सुनना नहीं चाहते फिर वो डायरेक्टर की या असिस्टेंट डायरेक्टर की कैसे सुनेंगे अगर वो सारी चीजें यू कहें कि जो आप एटिकेट्स की बात कर रहे हैं तमीज की बात कर रहे हैं अगर किसी विद्यार्थी में वो सारी चीजें हैं सुनने की क्षमता है सीखना चाहता है टाइम स्पेंड करना चाहता है तो निश्चित तौर पर वो आगे बढ़ेगा. और जिस विद्यार्थी के पास ये सारी चीजें नहीं है क्या कहना चाहेंगे.
1: अभी भी टाइम है सीखने को बट वहां पे जाके आपको कोई दोबारा अगर आपने गलती करी कोई बैठ के समझाएगा
0: नहीं समझाएगा राइट.
1: ये एक चीज है वहाँ पे अगर आपने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी विद वन
0: किसी को मतलब नहीं है आपसे राइट
1: तो फिर वो आगे बढ़ जाएंगे. आप अपनी मिस्टेक जहाँ तक आप जब तक रियलाइज करोगे फिर टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन वो थोड़ा एक डिफिकल्ट हो जाता है.
0: क्या कहना चाहेंगे शारदा यूनिवर्सिटी में अपने स्कूल में काफी समय के बाद आप आए हैं रेडियो स्टेशन उस वक्त आपका आपके सामने बन रहा था और आज आप रेडियो स्टेशन में हैं एक और आपका एक साक्षात्कार मैं कर रहा हूँ. सो कैसा फील करते हैं अपनी कॉलेज में आकर रेडियो स्टेशन में आकर क्या कहना चाहेंगे फाइनली.
1: एक्चुअली सर आई फील वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड कि जहाँ पे मतलब व्हेन हम लोग थे तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना एम्फेसिस ऑन अ फिल्म स्कूल ऑन मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट नहीं था एंड नाउ अब आके देख रही हूँ कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे हो गई हैं. सो आई फील लाइक कि एज स्टूडेंट्स वी मिस्ड आउट ऑन दैट. हम लोगों को हर चीज के लिए वी वर लाइक के अपने से वो करते थे
0: जी जी
1: बट नाउ यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज देख के फॉर स्टूडेंट्स आई फील रियली हैप्पी एंड रियली प्राउड.
0: रियली नाइस. सो मैं भी यही कहूंगा आपकी बात का एक निष्कर्ष निकालते हुए कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पढ़ रहे हैं सीख रहे हैं समझ रहे हैं इस अवसर का उनको फायदा उठाना चाहिए लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए क्योंकि अगर आप मुंबई जाना चाहते हैं या फ्रीलांस अपना कुछ काम करना चाहते हैं जो सीखने का मौका आपको मिल रहा है जिंदगी शायद वो दोबारा आपको सीखने का मौका ना दे. और अगर आप किसी डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं तो धैर्य पेशेंस होना बहुत जरूरी है. पैशन के साथ आपने उस पेशेंस को जब आप कैरी करके चलेंगे तो निश्चित तौर पर उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट जो आएगा परिणाम जो आएगा वो सुखद आएगा. सुप्रेमवदा मुझे आपसे बात करके वाकई बेहद खुशी हुई बहुत अच्छा लगा और खास बात ये अच्छी लगी कि जो आपने कहा वो मैंने पाया आपकी सादगी में और मैं आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत दुआएं करता हूं और सब कुछ अच्छा हो बेहतर हो हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं.
1: थैंक यू सो मच सर.
0: सो लिसनर्स आप थे हमारे साथ प्रेमवदा जो कि एक प्रोड्यूसर हैं डायरेक्टर हैं राइटर हैं. ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा 01204060205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर. इसके अलावा 90.8 FM @sharda.ac.in पर भी आप हमें मेल कर सकते हैं. सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरु शारदा 90.8 FM. मैं हूं गगन मुझे दीजिए अनुमति. जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है प्यार के साथ मोहब्बत के साथ गुजारते चले जाइए. ना टेंशन लेने की जरूरत ना किसी को टेंशन देने की जरूरत. टाटा बाय बाय एंड टेक केयर.
2: प्ले क्या बात है.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: ब्यूटिफुल ट्रैक। म्यूजिक डायरेक्टर भीम्स सेसिरोलियो, सिंगर्स पवन सिंह एंड जॉनिता गांधी, लिरिक्स वायु श्रीवास्तव।

0: चिलूंगी बोर।
1: पवन सिंह, आप हमारे साउथ में?
2: अरे हाँ भाई, लेकिन हमारे साउथ फैंस खाते भी तक कुछ होके के चाहिए ना। गाना बुझे कि नहीं?
1: हाँ
2: चलो धूम मचाते हैं।
1: फिक्स।

0: भाभी लो मिठाई खाओ।
1: अरे किस खुशी में?
0: वो सीता क्लास में फिर से फर्स्ट आई है।
1: वाह तेरी बेटी तो बिल्कुल तूफान मेल है। मेरी रिंकी तो हमेशा थकी थकी, नंबर भी कम आते हैं, थकान मेल कहने लग गए हैं सब उसे।
0: ओहो भाभी रिंकी को अनीमिया तो नहीं?
1: अनीमिया?
2: अनीमिया यानी खून में आयरन की कमी, जिससे दिमाग सुस्त और शरीर की ताकत कम हो सकती है। इसीलिए बढ़ती उम्र के हर लड़की लड़के को हर हफ्ते आयरन की एक गोली लेनी चाहिए, पौष्टिक आहार के एक घंटे बाद। ये गोली सभी सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में मुफ्त दी जाती है। याद रहे, आयरन है खास, करे शरीर और दिमाग का विकास।
1: ललिता लो मिठाई खाओ।
0: अरे वाह रिंकी भी थकान से तूफान बन गई।
3: आओ बनाएं अनीमिया मुक्त भारत। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

राम राम दोस्तों, आप सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनू शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में 9:01 एक मिनट हो चुके, 4 तारीख है, दिन की शुरुआत करते हैं इस ब्यूटीफुल ड्रैग के साथ। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल योर सुरशादा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। क्या है खास जाने के जरूर, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुरशादा 90.8 एफएम। सुरक्षित चलिए, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंची, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। गुड मॉर्निंग।

हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। इस्तकबाल खुशामदीद, खैर मकदम, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। जनाब मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूँ आपके साथ और हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। यकीन मानिए कि जब विश्व का कल्याण है तो आपका भी कल्याण है, क्योंकि अमेरिका ईरान का जो युद्ध रहा उसकी वजह से दिक्कतें परेशानियाँ हमारे सामने बहुत ज़्यादा हुई, तेल की समस्याएं हमारे सामने आई। आप सोचते हैं या मैं सोचता हूँ कि अरे नहीं, हमारे घर में थोड़ी युद्ध हो रहा है, हमारे आसपास थोड़ी हो रहा है, लेकिन बहुत फर्क पड़ता है ना। तो इसीलिए हर वक्त यही कामना करता हूं कि चैन हो, अमन हो, सुकून हो, शांति हो। और जब इस तरीके से माहौल बनता है तो निश्चित तौर पर कहीं कोई हर्डल ब्रेकर्स नहीं आएंगे हमारे सामने। और वर्ष 2047 का जो लक्ष्य है कि भारत को विकसित भारत बनाना है, तो उसके लिए छोटे छोटे कदमों से जब हम आगे बढ़ रहे होंगे तो निश्चित तौर पर सब अच्छा होगा, बेहतर होगा। जैसे कि आसपास देखें तो बहुत विकास हो रहा है, मेट्रो आ गई है, बुलेट ट्रेन यहाँ से गुजरने वाली है नोएडा, ग्रेटर नोएडा से लखनऊ के लिए एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट हमारे सामने आ गया है और भी बहुत कुछ हमें धीरे धीरे चीज़ें देखने को मिलेंगी। और हरियाली का जब मैं जिक्र करता हूँ तो जिक्र उस बात का होता है कि एक पौधा आप अपनी माँ के नाम जरूर लगाइए। बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और बरसात के मौसम में ही दिक्कतें परेशानियां भी हमारे सामने बहुत ज्यादा आती हैं। मौसम का क्या मिजाज है उसके बारे में भी बातें करेंगे, हमारे आसपास क्या अपडेट्स हैं उसके बारे में भी जानेंगे, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज भी खुल चुके हैं उसके बारे में भी कुछ कुछ बातें होंगी जरूर, और लोकल इन्फॉर्मेशन भी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑल योर सुर शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ।

0: Never buy investments are subject to market risk. Read all skin related documents carefully.
1: Solo Sharda.
2: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
3: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
4: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
5: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
3: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम।
6: ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए
7: ग्रामीण और गरीब तबके के मरीजों के लिए 500 बेड समर्पित किए हैं।
6: अब महंगे इलाज और दवाइयों से मिलेगा आपको छुटकारा,
7: क्योंकि सरकारी अस्पताल की तर्ज पर शारदा अस्पताल में आधारभूत जांचें, दवाइयां, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और डॉक्टर की सलाह समेत सभी सुविधाएं मुफ्त दी जा रही है। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।
8: हाय, मैं हूं विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: नवजात शिशु, लड़की हो या लड़का, उसकी एक समान देखभाल करें।
1: नवजात लड़की या लड़के में खतरे के लक्षण दिखते ही उसे बिना समय गवाए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या SNCU में ले जाएं।
0: एक वर्ष तक के सभी नवजात शिशु को स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या हो तो सरकारी अस्पताल में उपचार, दवाएं, सभी जांचें तथा जरूरत पड़ने पर रक्त, ये सभी सेवाएं निशुल्क दी जाती हैं।
1: और 102 एम्बुलेंस सेवा घर से अस्पताल और अस्पताल से वापस घर तक निशुल्क पहुंचाएगी।
0: जब होगी सही देखभाल तभी तो आएगी खुशियां बेमिसाल।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आशा या नर्स दीदी को संपर्क करें।
0: शिशु की सही देखभाल से
1: फर्क पड़ता है। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
3: एक छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
4: ऐसे ही जब आपकी जिंदगी भर की कमाई कोई साइबर फ्रॉडस्टर लूट ले तो तकलीफ तो होगी ही। हमेशा याद रखें, अपनी बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें।
3: साइबर फ्रॉड में पैसों की ठगी होने पर तुरंत इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें। इससे आपके पैसे रिकवर होने की संभावना बढ़ जाती है।
5: अभी आपने जो जन संदेश सुना, सामुदायिक रेडियो स्टेशन का मतलब फर्ज यही है कि हम आपको हमेशा अपडेट रखें कि हमारे आसपास क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो निश्चित तौर पर उस घटना दुर्घटना से हमें सीखना होगा कि वो घटना पुनरावृत्ति उसकी हमारी जिंदगी में ना हो। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूं अगर आपके साथ सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बात की थी कि 1 तारीख से स्कूल खुल चुके हैं और उसके बाद भाग दौड़ शुरू हो रही है कॉलेजेस की ओर, यूनिवर्सिटीज की ओर। स्कूल यानी कि स्कूल में छोड़ रहे बच्चे पहुंच रहे हैं, लेकिन कॉलेज कैंपस की मैं बात कर रहा हूं इसलिए क्योंकि 12th के बाद जो भाग दौड़ शुरू होती है कि मेरे बच्चे को एक अच्छा माहौल मिले, एक अच्छा कैंपस मिले, तो मैं तो कहूंगा कि भैया शारदा यूनिवर्सिटी में एक बार आप यहां आइए और आप यहीं के होकर रह जाएंगे, क्योंकि एक छत के नीचे बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को समझने को मिलेंगे। और शारदा यूनिवर्सिटी का SSMFE, इसको हम अपना कैसे भूल सकते हैं बॉस, यानी कि शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। यहाँ पर आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन, फिल्म मेकिंग, बहुत कुछ आपको सीखने को समझने को मिलता है, तो एक बार आप आइएगा जरूर। चलिए और क्या है खास उसके बारे में बात कर लेते हैं। मौसम का जब मिजाज बदल रहा है तो निश्चित तौर पर उसका फर्क हमारी सेहत पर पड़ता हुआ नजर आएगा। ऐसे मौसम में आप अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, लापरवाही बिल्कुल भी मत बरतिएगा। ग्रेटर नोएडा में आज यानी कि 4 जुलाई आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और रात में गरज के साथ आंधी साथ पानी और बौछारें गिरने की संभावना है। वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त 34 से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर बना हुआ है और हवा में अधिक आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी होने के कारण लोगों को दिन भर भीषण उमस और गर्मी का एहसास रहेगा। तो आने वाले मौसम को ध्यान में रखते हुए अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, लापरवाही मत बरतिएगा, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल योर शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।
6: हो गया चंगा पर राघव की टीवी ना छोड़े जान।
7: अगर आपने डॉट्स का कोर्स बीच में छोड़ दिया है तो शीघ्र जांच कराएं, कहीं आपको बिगड़ी हुई टीवी यानी MDR टीवी ना हो चुकी हो। इसका इलाज 24 से 27 महीने तक चलता है, ऐसी स्थिति में इलाज पूरा कराएं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
8: हाय नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। हमेशा बड़े बुजुर्गों ने कहा है, डॉक्टर्स ने भी कहा है कि शुद्ध खाइए। शुद्ध खान पान जब आपका होगा तो निश्चित तौर पर वो आपके शरीर के अंग को लगेगा। लेकिन जब हम देखते हैं कि दिक्कतें परेशानी हमारे आसपास बहुत ज़्यादा है, जैसे कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मसलन जैसे कि कुछ लोगों की अगर हम बात करें तो जैसे सपोज करिए कोई दूध वाले भैया हैं वो मिलावट कर रहे हैं, अगर आप दाल वाले भैया हैं वो मिलावट कर रहे हैं, और वातावरण में तो हम सब ने मिलावट कर ही दी है, और जिसकी वजह से टॉप लिस्ट में दिल्ली का नाम है, दिल्ली NCR का नाम है। और जब नवंबर का आसपास का जो महीना आता है तो गैस चैम्बर बनता हुआ नजर आता है, AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब श्रेणी में होती है। अगर यही सब चलता रहा तो इसका फर्क हमारी सेहत पर पड़ ही रहा है। कहते हैं कि सेहत रहेगी तो निश्चित तौर पर आप दुनिया जहान को देख पाएंगे, बहुत रुपया कमा पाएंगे, आगे जी पाएंगे। लेकिन जब सेहत नहीं होगी, आप और हम सेहतमंद नहीं होंगे, तो दिक्कतें परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। सो प्लीज प्लीज प्लीज अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। बरसात के मौसम में क्या खाएं क्या ना खाएं ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है कि शुद्ध खाइएगा, बाहर का तला भुना आप ना खाइएगा, और बासी खाने से आप अपने आप को बचा कर रखिएगा, क्योंकि अगर आपने लापरवाही बरती तो दिक्कतें और ज्यादा आपके सामने बढ़ सकती हैं। प्योरिटी की मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि मिलावट के दौर में अपने आप को बचा कर रखिए। जिंदगी को जीना है, खुशहाल देश को बनाना है, और युवा देश का भविष्य है। वर्ष 2047 का जो लक्ष्य है वो हम सबको मिलजुल कर पाना होगा। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूं गगन, आपके साथ सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ, मेरे बिना तू डुएट वर्जन फ्रॉम द मूवी रेस, आतिफ असलम की आवाज। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन।

0: लक्षण, इसी से तो किसी की पहचान बनती है। और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो, फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं, बताइए। देखिए, सिर्फ पांच बातें ही तो याद रखनी है आपको। दो हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
1: ये संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हेलो कौन? अरे हम बोल रहे। हेलो कौन?
1: अजय हम बोल रहे बताने का मौका तो दो।
2: ये क्या था?
1: ये मतलब थोड़ा सा मजाक था। गुड मॉर्निंग।
2: हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वॉइस सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। और मेरे साथ होते हैं सजीव प्रसारण के दौरान बहादुर।
1: हाँ, बड़ी बहादुरी के साथ मैं खबरों को लेकर आता हूँ और आप सबको
2: खबरदार।
1: हाँ वही अटक गया था, खबरदार करता हूँ। वो अकाउंट होना चाहिए। अगर आपने कोई काम किया है, आपने कोई गलत काम किया है, तो आपको अकाउंट होना चाहिए।
2: मतलब
1: वहां से अकाउंट से मतलब जितना पैसा आता है हम विड्रॉ कर लेंगे क्योंकि तुमने गलत काम किया।
2: हाँ, बहादुर ने कुछ इशारा कर दिया है, वही इशारा मैं आप तक भी पहुंचाना चाहता हूँ। ऑन रोड जब आप चल रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है कि सुरक्षित चलिए, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचिए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका इंतजार कर रहा है, घर पर आपका परिवार, ऑफिस में
1: ऑफिस का परिवार। ये बात हम क्यों कर रहे हैं? एक
2: रिसर्च।
1: हाँ, रिसर्च के आधार पर कर रहे हैं और इस बात में दम होगा, आप सुनिएगा, उदाहरण के साथ बताऊंगा।
2: जैसे कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की मैं बात कर रहा हूँ। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर हमने सुना है कि देहरादून से दिल्ली से देहरादून या देहरादून से दिल्ली, मतलब लगभग आप 4 घंटे में इस NHAI हाईवे पर पहुंच सकते हैं। लेकिन जब आपकी स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है और सडनली बारिश के मौसम में जब आपको पता चले कि रोड धस गई है, तो आप क्या करते हैं? आपको बहुत बुरा लगता है, आपको नुकसान हो जाता है, रोड धस जाती है या तो फिर आप आगे निकल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग अलर्ट होते हैं, सजग होते हैं, वो लोग वीडियो बनाते हैं, खबर वो वायरल होती है, वहीं पर लोग कई लोगों को अलर्ट भी करते हैं और वो वीडियो मैंने भी देखा था। और वही खबर आज हमारे सामने है कि वो जो टीम लीडर और प्रोजेक्ट मैनेजर हैं जिनकी अकाउंटेबिलिटी होती है, जवाबदेही।
1: हाँ, मैं इसी बात पर आ रहा था। और उनकी जवाबदेही होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ,
2: क्योंकि दुर्घटना घट सकती थी और इस तरीके से हर किसी की जवाबदेही होनी चाहिए कि अगर ऐसा हुआ है तो क्यों हो रहा है, भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो। सुरक्षित चले, सुरक्षित घर पहुंचे और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि रोड कितना भी अच्छा हो लेकिन आप भी सुरक्षित चलिए। हाँ, कुछ भी हो सकता है, मतलब
1: इट्स हैपेंड ओनली इन इंडिया।
2: चलिए, मेरा भारत देशमान, भारत को विकसित भारत बनाना है तो उसके लिए हमें छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ना होगा। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, में हूँ गगन आपके साथ और सच बात है मेरा भारत देश महान। गुड मॉर्निंग।

डियर किरण, अक्सर तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। एक खत भी लिखना शुरू किया है, पता नहीं पोस्ट करने की हिम्मत होगी कि नहीं, पर बहुत कुछ लिखना चाहता हूँ।

0: मुकेश ये अभी 50 साल का है और ये बड़ा बेटा अरुण ये हमेशा 21 का ही रहेगा।
1: हमें लगता है कि सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड में क्रिकेट की दीवानगी है, कई लोगों को लगता है, लेकिन हमें तो बिल्कुल नहीं लगता। हमें पता है कि फुटबॉल, हाँ फुटबॉल का सबसे ज्यादा क्रेज, हाँ क्रेज होता है आगे। गुड मॉर्निंग,
2: और सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वॉइस सामुदायिक रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेदयानी गगन के साथ। शाम के वक्त में अक्सर हम लोगों को देखते हैं कि लोग टीवी सेट से चिपके रहते हैं, फीफा वर्ल्ड कप का लुत्फ उठा रहे हैं और अपडेट्स बहुत सारी हमारे सामने आ रही हैं। और स्टेडियम का जब हम रुख करते हैं, स्टेडियम को जब हम देख रहे होते हैं, इतना ज्यादा उत्साह, इतना ज्यादा क्राउड होता है, बस पूछे मत। इस गर्मी के मौसम में गर्मी एक तरफ और वर्ल्ड कप एक तरफ। खबरें ये आ रही कि लियोनेल मेसी ने एक बार फिर फुटबॉल जगत में वो कर दिखाया है, वो कारनामा कर दिखा दिया है कि जो आज तक कोई नहीं कर सका। वर्ष 2026 फीफा वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में केव वर्डे के खिलाफ खेलते हुए मेसी ने इतिहास रच दिया है और मियामी स्टेडियम में मैच के 29वें मिनट में लिसांड्रो मार्टिनेज के एक लंबे पास को अपने जादुई बाएं पैर से कंट्रोल करते हुए मेसी ने गेंद को सीधे नेट के ऊपरी हिस्से में दे मारा। लख लख बधाई जी। और ये सब जब देखते हैं तो निश्चित तौर पर एक सीख मिलती है उस यंग जनरेशन को।
1: जेंजी बोलते हैं उसको।
2: अच्छा ठीक है, मेरे समय में यंग जनरेशन बोलते थे, तुम्हारे समय में जेंजी,
1: दोनों बोल सकते हो, दोनों को समझ में आ जाएगा।
2: और इस शानदार गोल के साथ ही मेसी फुटबॉल इतिहास में वर्ल्ड कप के मंच पर 20 गोल का आंकड़ा छूने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। लख लख बधाइयां। और आप लोगों को प्रेरित करते हैं, आप प्लेयर को प्रेरित करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको देखकर कोई आप जैसा बनना चाहता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डॉट गो एनीवेयर। एस्टीट्यूड ऑल सुरशादा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुरशादा 90.8 एफएम। स्टूडियो की घड़ी में 9:48 हो चुके हैं, 4 तारीख यानी कि 4 जुलाई। गुड मॉर्निंग।
3: देखूंगा
2: आय हाय टोनी कक्कड़ की आवाज, चाहे तो वॉल्यूम अप कर सकते हैं लेकिन गड्डी पूरे हो जाओ।

क्या बात, इस ब्यूटीफुल ट्रैक को सुनने के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल, खुशामदीद, खैर मकदम। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुरुशाता 90.8 FM। सामुदायिक रेडियो स्टेशन होने के नाते इसमें भागीदारी आप लोगों की भी होती है, इसलिए 120-40-60-205 हमारे शहर का STD कोड, 40-60-205 हमारा नंबर। इसके जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं। अगर आपके पास लगता है कि कोई हुनर है, कुछ आप कहना चाहते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तो निश्चित तौर पर हम आपको रिकॉर्ड करेंगे और आपकी बातों को जन जन तक हम पहुंचाएंगे। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ। 9:54 हो चुके हैं, वक्त का लगभग इशारा है आपसे अनुमति ले लेने का, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि ग्रेटर नोएडा में क्या खास है वो बातें मैं आप तक शेयर ना करूं। जाहिर सी बात है कि जब हम उड़ान भरते हुए देखते हैं हवाई जहाज को, तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और हम कह सकते हैं कि हम नोएडा में रहते हैं, जेवर में रहते हैं। और कभी किसी ने सोचा होगा, है ना, कभी किसी ने सोचा था और उसके बाद वो धरातल पर लाना एक असंभव सा कार्य था। लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने वो कर दिखाया जिसका बड़ी बेसब्री से सब लोगों का इंतजार था। फाइनली नोएडा एयरपोर्ट से आज से श्रीनगर के लिए उड़ानें मिलनी शुरू हो रही है, तो एक अच्छी खबर है। और ये उड़ान सीधी नहीं होगी, अभी ये सिर्फ चंडीगढ़ से फिर वहां से आपको दूसरी फ्लाइट लेनी होगी। 6:10 पर श्रीनगर के यात्रियों को जो विमान है वो पहला यहां से लेकर उड़ेगा और 7:10 पर चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेगा और वहां से विमान यानी कि फ्लाइट बदलनी होगी। तो इस तरीके से एक अच्छी खबर हमारे सामने। और क्या अपडेट है इन शहरों के लिए? उड़ाने शुरू हो चुकी, लखनऊ है, चंडीगढ़, धर्मशाला, जम्मू, अमृतसर, पंतनगर, बरेली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, जोधपुर, जयपुर, भोपाल, देहरादून, किशनगढ़, श्रीनगर। हाँ, धर्मशाला के लिए हम अगली बार छुट्टियों में जा सकते हैं, जिन में हमको बता देंगे पहले से। धारी, लिरिक्स बाय कुमार, म्यूजिक बाय श्रेयस पुराणिक, दो दीवाने शहर में, ओनली ऑन सारेगामा। सो लेट्स एंजॉय इट, केवल सुरोशादा 90.8 FM।

भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.

0: नमस्कार श्रोताओ, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ गई में, और मैं हूं आपका दोस्त शशि कपूर। दोस्तों, आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। जब हम किसी बच्चे के उज्जवल भविष्य की बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले क्या आता है? अच्छी पढ़ाई, अच्छा स्कूल, अच्छे शिक्षक, अच्छा माहौल, है ना?
1: बिल्कुल, और कई लोग तो यह भी कहते हैं कि अगर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल जाए तो उसका भविष्य अपने आप संवर जाता है।
0: बात तो सही कही है विपिन जी आपने, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस अच्छे स्कूल तक पहुंचने से पहले भी बच्चे की एक यात्रा शुरू हो चुकी होती है, और उसी यात्रा की शुरुआत तय करती है कि आगे उसकी नींव कितनी मजबूत होगी।
1: अरे मतलब बच्चे का भविष्य स्कूल से भी पहले शुरू हो जाता है?
0: बिल्कुल, जरा और पीछे चलिए।
1: अच्छा, तो क्या जन्म के बाद?
0: नहीं, उससे भी पहले।
1: उससे भी पहले? अब तो आप हमारी उत्सुकता बढ़ा रहे हैं, आखिर कब से?
0: देखिए, विशेषज्ञों का कहना है कि एक बच्चे के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत उसकी माँ से होती है। जब एक महिला स्वस्थ होती है, उसे पर्याप्त और संतुलित पोषण मिलता है, तभी उसके बच्चे को भी जीवन की मजबूत शुरुआत मिलती है।
1: यानी बच्चे का भविष्य केवल उसके जन्म के बाद नहीं, बल्कि माँ के स्वास्थ्य और पोषण से ही तय होना शुरू हो जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। जब हम मातृ पोषण की बात करते हैं तो हम केवल एक महिला की सेहत की बात नहीं कर रहे होते, हम उस शक्ति की बात कर रहे होते हैं जो उसे स्वस्थ गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्वस्थ बच्चे की ओर ले जाती है। हम उस मजबूत नींव की बात कर रहे होते हैं जिस पर पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ी का भविष्य खड़ा होता है।
1: और शायद यही वजह है कि आजकल हर जगह मातृ पोषण पर इतना जोर दिया जा रहा है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। हाल ही में संपन्न हुए पोषण पखवाड़ा ने भी हमें यही संदेश दिया कि जीवन के शुरुआती वर्षों में मिलने वाला सही पोषण केवल शरीर ही नहीं, बल्कि बच्चे के मस्तिष्क के विकास और उसके पूरे भविष्य को प्रभावित करता है।
1: यानी अगर शुरुआत सही हो तो आगे की राह भी मजबूत बनती है।
0: बिल्कुल, और इन्हीं महत्वपूर्ण बातों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं सभी के जाने पहचाने हमारे अपने सिहतिया सिंह जी और हमारी अपनी टीकन भाभी जी। तो सिहतिया भैया और टीकन भाभी, आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: भाई, आप दोनों को मेरा प्रणाम और सभी सुनने वाले श्रोताओं को भी मेरा दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत प्रणाम। भाई, सब्जेक्ट जो आपने चुना है, इस बात के लिए मैं आपकी तारीफ करूंगा और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि, कहते हैं ना कि जच्चा बच्चा, यानी कि जब बच्चा दुनिया में आ रहा है वो भी स्वस्थ आए और जो उसकी माँ है वो भी स्वस्थ रहे, और इसके लिए जरूरी है पोषण। और कह सकते हैं कि ये जो विषय वाकई बहुत अच्छा है, और विपिन साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
3: नमस्कार श्रोताओं, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ आपकी टीकन देवी, और आप सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा प्रणाम। दोस्तों, हम हमेशा आपसे कुछ जरूरी मुद्दों पर बात करते हैं। आज हमारा जो विषय है वो माँ और बच्चे को लेकर है। यानी आप सभी जानते हैं कि माँ जो खाती पीती है उसका सीधा असर बच्चे तक पहुँचता है।
0: बिल्कुल सियातिया भैया, अभी हमने बात की कि बच्चे के भविष्य की शुरुआत उसकी माँ से होती है, लेकिन कई लोग सोचते हैं कि बस पेट भर खाना खा लिया वही काफी है। क्या सचमुच में माँ का पोषण इतना महत्वपूर्ण है?
2: बिल्कुल महत्वपूर्ण है भाई, और ये केवल गर्भावस्था की बात नहीं है। जब किसी महिला को रोजाना संतुलित और पौष्टिक भोजन मिलता है तो उसका शरीर मजबूत रहता है, उसमें काम करने की ऊर्जा रहती है, वो कम बीमार पड़ती है और अपने परिवार की बेहतर देखभाल भी कर पाती है। लेकिन जब वही महिला माँ बनने वाली होती है तब उसका शरीर सिर्फ उसका अपना नहीं रहता, गर्भ में पल रहे बच्चे को मिलने वाला हर पोषण उसी के शरीर में पहुंचता है। इसलिए माँ जितनी स्वस्थ होगी बच्चे की शुरुआत भी उतनी ही बेहतर होगी। गर्भ में पल रहे बच्चे का पूरा विकास, उसका शरीर, उसके अंग, यहाँ तक कि उसके मस्तिष्क का विकास भी माँ के स्वास्थ्य और पोषण पर ही निर्भर करता है। दोस्तों,
1: यानी माँ की थाली जितनी पौष्टिक होगी बच्चे का भविष्य भी उतना ही मजबूत होगा।
2: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: लेकिन सेहतिया जी, आपने पोषक तत्वों की बात की, आजकल एक और शब्द बहुत सुनने को मिलता है, एनीमिया, यानी खून की कमी। आखिर ये समस्या कितनी गंभीर है?
2: भाई कपूर साहब, यानी कि मेरे दोस्त शशि कपूर साहब, ये समस्या बहुत गंभीर है। एनीमिया, इसके बारे में जिक्र होना बहुत जरूरी है, इसके बारे में सवाल करना भी अति आवश्यक है। ये बहुत गंभीर समस्या है दोस्तों। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि कई महिलाओं को वर्षों तक पता ही नहीं चलता कि उन्हें खून की कमी है। वे कमजोरी, थकान या चक्कर आने को सामान्य बात समझकर नजरअंदाज कर देती हैं। लेकिन जब शरीर में पर्याप्त खून नहीं होता तो शरीर के अलग अलग अंगों तक ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं पहुंच पाती। इसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है,
1: इसलिए उन्हें क्या थकान रहती है।
2: बिल्कुल, जल्दी थक जाना, कमजोरी महसूस होना, चक्कर आना, सांस फूलना, काम करने की क्षमता कम होना, ये सब खून की कमी के सामान्य लक्षण है। लेकिन अगर यही समस्या गर्भवती महिला में हो तो जोखिम और भी बढ़ जाता है दोस्तों।
0: सेहतिया भैया, किस तरह का जोखिम?
2: देखिए, जोखिम की जो आप बात कर रहे हैं, समय से पहले प्रसव हो सकता है, कम वजन वाले बच्चे का जन्म हो सकता है, और प्रसव के समय अगर ज्यादा रक्त स्राव हो जाए तो पहले से एनीमिक महिला के लिए स्थिति जानलेवा भी हो सकती है।
1: अरे, हम तो हमेशा यही समझते थे कि खून की कमी का मतलब बस थोड़ा कमजोर महसूस करना ही होता है।
3: यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। एनीमिया सिर्फ कमजोरी नहीं बल्कि माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर रूप से खतरनाक बन सकता है।
0: भाभी जी, आपके कहने का मतलब ये है कि इसकी कीमत सिर्फ माँ नहीं बच्चा भी चुकाता है।
3: बिल्कुल, इसलिए आज एनीमिया मुक्त भारत अभियान के माध्यम से किशोरियों, महिलाओं, गर्भवती माताओं तक आयरन की गोलियां, नियमित जांच, पोषण संबंधी जानकारी पहुंचाने का हम सब प्रयास कर रहे हैं। सुनो शारदा सामुदायिक रेडियो स्टेशन और स्मार्ट मिलकर एक कार्यक्रम चला रहे हैं, सेहत सही लाभ गई। हमारा एक ही उद्देश्य है, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सभी जानकारियों को हम अपने श्रोताओं तक लेकर आए।
1: लेकिन सेहतिया जी, अक्सर लोग सोचते हैं कि गर्भ ठहरने के बाद ही अच्छा खाना शुरू करना चाहिए, क्या तैयारी उससे पहले भी जरूरी है?
2: बिल्कुल, स्वस्थ गर्भावस्था की तैयारी तो बहुत पहले से शुरू हो जानी चाहिए। अगर एक किशोरी स्वस्थ है, उसका भोजन संतुलित है, उसे आयरन की कमी नहीं है, तो भविष्य में गर्भावस्था भी अधिक सुरक्षित रहती है।
3: यानी एक स्वस्थ माँ बनने की शुरुआत एक स्वस्थ बेटी से होती है।
2: आपने बिल्कुल सही कहा टीकन देवी।
0: सियतिया भैया और टीकन भाभी, हाल ही में पोषण पखवाड़ा का मुख्य विषय बच्चों के मस्तिष्क के विकास पर था, क्या पोषण का दिमाग से भी इतना गहरा संबंध है?
2: बिल्कुल, बच्चे के मस्तिष्क का विकास गर्भावस्था के दौरान ही शुरू हो जाता है। उस समय आयरन, फॉलिक एसिड, आयोडीन और DHA जैसे पोषक तत्व बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही पोषक तत्व आगे चलकर बच्चे की सीखने, समझने, याद रखने और नई चीजें सीखने की क्षमता की मजबूत नींव रखते हैं।
1: और इसी से जुड़ा एक शब्द हम अक्सर सुनते हैं, पहले 1000 दिन। आखिर इसका क्या मतलब है?
3: 1000 दिन यानी गर्भ धारण से लेकर बच्चे को 2 साल का होने तक विशेष रूप से ध्यान रखें, और इसे ही सबसे महत्वपूर्ण दौर माना जाता है। इसी दौरान बच्चे के मस्तिष्क, शरीर और रोग प्रतिरोधक क्षमता का सबसे तेजी से विकास होता है। अगर इस पूरे समय में सही पोषण और सही देखभाल मिले तो बच्चे के स्वस्थ और सक्षम नागरिक बनने की संभावना कई गुना तक बढ़ जाती है।
2: टीकन जी, अब श्रोताओं को ये भी बताइए कि बच्चे के जन्म के बाद सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज क्या होती है?
3: बच्चे के जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करना, बहुत से लोग पहले दूध को फेंक देते हैं, यही सबसे बड़ी गलती है। माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध, जिसे कोलोस्ट्रम भी कहा जाता है, बच्चे के लिए पहली प्राकृतिक सुरक्षा कवच होता है और उसे ये कई संक्रमणों से बचाने में मदद करता है। इसके बाद पहले 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध ही देना चाहिए। इस दौरान पानी, शहद, घुट्टी, कोई दूसरा भी भोजन देने की जरूरत नहीं होती।
0: और जब बच्चा 6 महीने का हो जाए तब?
2: भाई सवाल तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तब माँ के दूध के साथ साथ पूरक आहार शुरू करना चाहिए। घर में उपलब्ध पौष्टिक भोजन जैसे दाल, खिचड़ी, हरी सब्जियाँ, मौसमी फल, अंडा, जहाँ परिवार खाता हो, दही और अन्य स्थायी पौष्टिक खाद्य पदार्थ बच्चे के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शुरुआत थोड़ी थोड़ी मात्रा से करें और धीरे धीरे बच्चे की उम्र के अनुसार भोजन की मात्रा और विविधता बढ़ाते जाएं।
1: यानी हमें महंगे या बाजार के पैकेट वाले खाने की जरूरत नहीं है। अगर घर में उपलब्ध पौष्टिक चीजों का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बच्चे को अच्छा पोषण मिल सकता है।
3: बिल्कुल, कई बार लोगों को लगता है पोषण यानी महंगा खाना, जबकि सच यह है कि हमारे घरों और आसपास मिलने वाली दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, चना, मूंगफली, दूध, दही, अंडा, सब खाद्य पदार्थ बहुत ही पौष्टिक होते हैं। जरूरी बात है कि संतुलित भोजन हो और समय पर दिया जाए।
0: सियतिया भैया, आज की पूरी चर्चा से एक बात साफ साफ समझ में आती है कि बच्चे की अच्छी शुरुआत तभी संभव है जब माँ खुद स्वस्थ और पोषित हो।
2: बिल्कुल, अक्सर हम बच्चे के जन्म के बाद उसकी देखभाल पर ध्यान देते हैं, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि स्वस्थ बच्चे की शुरुआत एक स्वस्थ माँ से होती है। इसलिए हर लड़की, हर किशोरी और हर महिला के पोषण का ध्यान रखना पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, केवल उसकी अपनी नहीं।
1: और शायद इसी वजह से कहा जाता है कि अगर हम एक माँ को स्वस्थ बनाते हैं तो हम केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी को मजबूत बना रहे होते हैं।
3: बिल्कुल सही, परिवार में अक्सर महिलाएं सबसे आखिर में खाना खाती हैं या अपनी जरूरतों के हिसाब को अंत में रखती हैं। लेकिन अब समय है कि हम सोच बदलें। अगर माँ स्वस्थ रहेगी तभी वह अपने बच्चे, परिवार, समाज, समुदाय की देखभाल कर पाएगी।
0: बिल्कुल, और इसमें परिवार के बाकी सदस्यों की भी बराबर जिम्मेदारी है। पति, सास ससुर और घर के दूसरे लोग अगर गर्भवती महिला को समय पर भोजन, आराम और स्वास्थ्य सेवाएं लेने के लिए प्रोत्साहित करें तो इसका सीधा फायदा माँ और बच्चे दोनों को मिलता है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। गर्भावस्था के दौरान नियमित जाँच, डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह का पालन करना, आयरन, फॉलिक एसिड की गोलियां समय पर लेना, संतुलित भोजन करना और पर्याप्त आराम करना, ये सभी बातें मिलकर एक स्वस्थ गर्भावस्था सुनिश्चित करती हैं।
1: यानी पोषण केवल खाने तक सीमित नहीं है बल्कि सही जानकारी, समय पर जांच और परिवार के सहयोग से भी जुड़ा हुआ है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। जब सही जानकारी और सही व्यवहार साथ आते हैं तभी अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। दोस्तों
0: श्रोताओं, आज की चर्चा से हमने कई महत्वपूर्ण बातें सीखी। हमने जाना कि बच्चे के जीवन की सबसे मजबूत नींव उसकी माँ के स्वास्थ्य और पोषण से शुरू होती है। गर्भावस्था से पहले किशोरियों का अच्छा पोषण, गर्भावस्था के दौरान संतुलित आहार, एनीमिया से बचाव, नियमित स्वास्थ्य जांच और आयरन, फोलिक एसिड का सेवन, ये सभी स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चे के लिए बहुत जरूरी है।
1: हमने यह भी समझा कि बच्चे के पहले 1000 दिन उसके पूरे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू करना, पहले 6 महीने तक केवल माँ का दूध देना और उसके बाद समय पर पौष्टिक पूरक आहार शुरू करना बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बेहद आवश्यक है।
3: तो दोस्तों, हमारा विषय है महिला और बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर, यानी अगर माँ स्वस्थ है तो बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। मैं सभी बहनों और परिवार से यही कहना चाहूंगी कि सेहत को कभी भी नजरअंदाज ना करें, समय पर स्वास्थ्य केंद्र जाएं, अपनी नियमित जांच कराएं, आयरन, फॉलिक एसिड की गोलियां स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह के अनुसार लें और घर में उपलब्ध पौष्टिक भोजन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।
2: अगर आपके मन में पोषण, गर्भावस्था या बच्चे की देखभाल से जुड़ा कोई सवाल हो तो अपने

0: नजदीकी आशा कार्यकर्ता, ENM, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या स्वास्थ्य केंद्र से जरूर संपर्क करें। सही जानकारी ही सही निर्णय लेने की सबसे बड़ी ताकत है दोस्तों।
1: तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। याद रखिए, एक स्वस्थ माँ ही एक स्वस्थ बच्चे की पहली शिक्षक, पहली पोषण दाता और पहला सुरक्षा कवच होती है। जब माँ स्वस्थ होगी तभी बच्चा स्वस्थ होगा, परिवार खुशहाल होगा, मजबूत होगा और हमारा समाज भी मजबूत बनेगा।
2: इसी उम्मीद और इसी संदेश के साथ अब हमें दीजिए अनुमति, अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे एक नए विषय, नई जानकारी और नए संदेश के साथ।
0: क्या बात है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि अपने परिवार की महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण का विशेष ध्यान रखें।
3: धन्यवाद। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें और अपने आसपास के लोगों को भी ये जानकारी जरूर दें कि अगर माँ स्वस्थ रहेगी तभी बच्चा स्वस्थ बनेगा और हम एक ऐसे समाज की कल्पना कर पाएंगे जहाँ स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाएगी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सियतिया भैया आपका और टीकन भाभी आपका भी, जो अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल करके हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई। और हम तो यही कहना चाहेंगे सभी श्रोताओं से कि स्वस्थ रहें, जागरूक रहें और अपने आसपास के लोगों तक भी ये जानकारी जरूर पहुंचाएं। इसी के साथ आज का कार्यक्रम हमारा यहीं पर संपन्न होता है, लेकिन कार्यक्रम को संपन्न करने से पहले हम सब लेंगे सेहत की शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
2: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
0: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
2: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
2: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
4: सेहत सही तो लाभ कई।

0: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
1: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
0: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। यदि आपको दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, रात का पसीना, हल्का बुखार, वजन का कम होना या भूख में कमी महसूस हो तो जल्द से जल्द अपनी बलगम की जांच कराइए, क्योंकि ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। घबराइए नहीं, इसका 6 से 8 महीने का पूरा इलाज है और देश के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी जांच और इलाज के कोई पैसे नहीं लगेंगे। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: नमस्कार, स्वागत है दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। आज हम बात करने वाले हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की, जिसे हम आयुष्मान PMJAY के नाम से जानते हैं। ये देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। 9 करोड़ से ज्यादा परिवार इसके दायरे में आते हैं और हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलता है। आयुष्मान PMJAY योजना गरीब परिवारों को महंगे इलाज के कर्ज से बचाती है और समय पर बेहतर उपचार उपलब्ध कराती है। आज के एपिसोड में हम खास तौर पर जानेंगे कि बुजुर्गों के लिए इस योजना में क्या क्या सुविधाएं हैं, साथ ही बात करेंगे कि आशा और ANM जैसे स्वास्थ्य कर्मी की इसमें क्या भूमिका होती है, अस्पतालों में क्या सहूलियत मिलती है और मरीजों को किस तरह की फॉलो अप केयर दी जाती है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आप जानते हैं आपकी जानी पहचानी टीकन भाभी हमारे साथ में हैं। तो सबसे पहले टीकन भाभी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद आरजे भैया। आज बुजुर्गों की बात हो रही है तो हमारे गांव के केदार बाबा की याद आ गई। बाबा की उम्र होगी 72-73 साल। कुछ समय पहले तक खेती करते थे पर अब बुढ़ापे में शरीर साथ नहीं देता। कुछ महीनों से सीने में दर्द रहता था, सांस भी जल्दी फूल जाती थी, पर बाबा सोचते रहे कि इलाज कैसे कराएं, पैसा कहाँ से आएगा। एक दिन हालत ज्यादा खराब हो गई तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया। उनका आयुष्मान कार्ड बना हुआ था। अस्पताल पहुंचते ही कार्ड स्कैन हुआ और तुरंत जांच शुरू हो गई। डॉक्टर साहब ने बताया कि दिल की नसें ब्लॉक हो रही हैं। समय रहते ही उनकी एंजियोप्लास्टी हो गई और 1 रुपए भी नहीं लगा। पूरा खर्च आयुष्मान योजना ने उठाया। बाबा को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि बिना पैसे के भी इतना बड़ा इलाज हो सकता है।
0: बिल्कुल टीकन भाभी, यहाँ एक बात और साफ कर दीजिए, आयुष्मान PMJAY में 70 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक स्थिति देखकर शामिल किया जाता है या बगैर शर्त इलाज होता है?
1: देखिए, आयुष्मान PMJAY में 70 साल से ज्यादा उम्र वाले वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक स्थिति देखे बिना ही लाभ दिया जाता है। मतलब चाहे बुजुर्ग गरीब हो या ठीक ठाक हाल वाले हो, उनकी उम्र 70 साल पार हो गई तो उन्हें सीधे आयुष्मान योजना के तहत इलाज मिल सकता है। तो 70 वर्ष के ऊपर के बुजुर्गों के लिए ये योजना किसी सहारे से कम नहीं है। बस उनका इलाज जल्दी और अच्छे अस्पताल में हो जाए, यही इस योजना का मकसद है।
0: टीकन भाभी, बुजुर्गों की इस योजना में किन किन बीमारियों का इलाज होता है, साथ ही ये भी बताइए क्या इलाज सिर्फ सरकारी अस्पताल में या फिर निजी अस्पताल में भी करवाया जा सकता है?
1: देखिए आरजे भैया, आयुष्मान PMJAY में बुजुर्गों का सिर्फ बुखार खांसी वाला इलाज ही नहीं होता, बल्कि कैंसर, दिल की बीमारी, किडनी की खराबी, मोतियाबिंद, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे कई गंभीर रोगों का भी इलाज मुफ्त किया जाता है। प्रोस्टेट का कैंसर हो, घुटना बदलवाना हो, कूल्हा रिप्लेस करवाना हो या फिर न्यूरो की बड़ी सर्जरी, ये सब इस योजना में शामिल है। जहां तक अस्पताल का सवाल है तो इस योजना में देश भर के हजारों निजी और सरकारी दोनों तरह के अस्पताल शामिल हैं। मरीज को बस आयुष्मान कार्ड लेकर जाना है। अस्पताल में कार्ड स्कैन हुआ नहीं कि कैशलेस और पेपरलेस इलाज शुरू हो जाता है।
0: टीकन भाभी, एक खास सवाल तो पूछना ही भूल गया, छोटे बच्चों का आयुष्मान PMJAY में इलाज कैसे होता है, क्या उनके लिए अलग कार्ड बनवाना पड़ता है?
1: अरे नहीं आरजे भैया, छोटे बच्चों का अलग कार्ड नहीं बनवाना पड़ता। जन्म से लेकर 5 साल तक के बच्चे अपने माता पिता के आयुष्मान कार्ड पर ही इलाज करवा सकते हैं, यानी इस उम्र के बच्चे के लिए अलग कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं है। बस माता या पिता का आयुष्मान कार्ड दिखाएं और बच्चे का पूरा इलाज आराम से हो सकता है।
0: टीकन भाभी, अगला सवाल मेरा आपसे है कि अस्पताल में भर्ती होने के दौरान कौन कौन सी चीजें इस योजना में शामिल हैं? क्या सिर्फ दवाइयां मिलती हैं या टेस्ट, खाना, बेड वगैरह भी इसमें आते हैं?
1: असल में आरजे भैया, योजना की खासियत यही है, जब मरीज अस्पताल में भर्ती होता है तो इलाज से लेकर दवा तक सब कुछ कवर होता है। मान लीजिए किसी को अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आ गई, अब भर्ती होने से 3 दिन पहले तक डॉक्टर का परामर्श, जरूरी टेस्ट और दवाइयाँ, ये सभी योजना के अंदर आ जाते हैं। मतलब मरीज को भर्ती होने से पहले जो जांच करानी होती है उसका भी पैसा नहीं लगता। फिर जब अस्पताल में एडमिट हो जाते हैं तो पूरा इलाज योजना के तहत चलता है। टेस्ट हो, एक्सरे हो, खून की रिपोर्ट हो, दवाइयां हो, इंजेक्शन हो, सब आयुष्मान पीएमजेवाई में शामिल है। अस्पताल का बेड, आईसीयू या सामान्य वार्ड में रहना, नर्सिंग चार्ज, खाना सब फ्री है। तो सीधी बात ये है कि पीएमजेवाई योजना अस्पताल में भर्ती होने से पहले, भर्ती के दौरान और इलाज चलने तक हर जरूरी खर्च उठाती है।
0: अच्छा भाभी, एक और सवाल आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगा। हम बात कर रहे हैं आज के कार्यक्रम में आयुष्मान पीएमजेवाई की, तो आपसे अगला सवाल मेरा ये है कि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद भी क्या ये योजना मदद करती है?
1: बिल्कुल करती है। मरीज को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद 15 दिन तक फॉलो अप इलाज भी आयुष्मान पीएमजेवाई में मिलता है, जैसे दोबारा चेकअप, दवाइयाँ या छोटी जांच। यानी इलाज के बाद भी चिंता नहीं करनी पड़ती है।
0: भाभी, क्या आयुष्मान योजना पूरे देश में चलती है? मतलब अगर कोई अपने राज्य से बाहर चला जाए तो भी इस योजना के अंतर्गत अपना इलाज करवा सकता है?
1: हाँ बिल्कुल आरजे भैया, यही तो इस योजना की खास बात है। आयुष्मान कार्ड वाले लोग भारत के किसी भी लिस्टेड अस्पताल में इलाज करवा सकते हैं, चाहे वह अपने राज्य में हो या किसी दूसरे राज्य में। ये उन लोगों के लिए बहुत काम की चीज है जो दूसरे राज्य में काम करते हैं, जैसे प्रवासी मजदूर या फिर जो रिश्तेदारों से मिलने बाहर जाते हैं। मसलन अगर उत्तर प्रदेश का कोई परिवार दिल्ली, महाराष्ट्र या तमिलनाडु कहीं भी हो तो वो वहाँ भी इलाज फ्री में करा सकता है।
0: टीकन भाभी, सेहत की रक्षा में ANM और आशा की अहम भूमिका होती है, तो आयुष्मान पीएमजेवाई में क्या क्या करती हैं ये आशाएं और ANM बहन जी?
1: देखिए आरजे भैया, आशा और ANM की आयुष्मान पीएमजेवाई में खास जिम्मेदारी है। सबसे पहले तो ये अपने इलाके के सभी परिवार का रिकॉर्ड बनाती हैं जो आयुष्मान योजना के दायरे में आते हैं। ई कवच ऐप में एक परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रजिस्टर होता है। इसमें परिवार का नाम, उसकी आयुष्मान कार्ड वाली जानकारी सब कुछ भरना पड़ता है। फिर ANM और आशा घर घर जाकर लोगों को आयुष्मान पीएमजेवाई योजना समझाती हैं। कौन पात्र है, कार्ड क्यों जरूरी है, इससे इलाज कैसे मिलेगा, सब एकदम आसान भाषा में लोगों को बताती हैं। गांव की मीटिंग में भी अक्सर ये बातें बताती रहती हैं ताकि किसी को कंफ्यूजन ना रहे। ANM और आशा का सबसे जरूरी काम तो तब शुरू होता है जब किसी मरीज को अस्पताल से छुट्टी मिलती है। ये दीदियां एक हफ्ते के अंदर मरीज से मिलने जरूर जाती हैं। डॉक्टर ने जो दवाइयां लिखी हैं, विजिट की जो तारीख बताई है, सब चेक करती हैं और मरीज को ठीक से समझाती हैं। अगर किसी नवजात को स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट से डिस्चार्ज किया गया हो तो उसकी देखभाल में आशा दीदी और भी ज्यादा सतर्क रहती हैं। माँ को हर छोटी बड़ी बात समझाना बेहद जरूरी होता है। यदि मरीज को अचानक कोई समस्या हो जाए तो तुरंत उसे नजदीकी अस्पताल पहुँचाने का इंतजाम भी कर देती हैं। इनका काम यहीं खत्म नहीं होता, ये हर मरीज का रिकॉर्ड रखती हैं, जैसे नाम, आयुष्मान कार्ड नंबर, किस अस्पताल में भर्ती था, कब छुट्टी मिली, अगला फॉलो अप कब है, सब लिख कर रखती हैं ताकि किसी भी मरीज को परेशानी ना हो।
0: टीकन भाभी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे भाभी, आजकल सब कुछ मोबाइल पर हो जाता है, तो आयुष्मान योजना में भी क्या कोई ऑनलाइन सुविधा है जिससे लोगों को घर बैठे मदद मिल सके?
1: बिल्कुल आरजे भैया, आयुष्मान योजना तो ऑनलाइन सुविधा में भी आगे है। इसमें ऑनलाइन समाधान बहुत आसान बनाया गया है। सबसे पहले तो 24 घंटे चलने वाला हेल्पलाइन नंबर 1800-1800-4444 है। किसी भी समय कॉल करिए और अपनी समस्या बता दीजिए, तुरंत जवाब मिल जाता है। फिर इसकी वेबसाइट www.pmjy.gov.in है। आदमी घर बैठे मोबाइल से ही चेक कर सकता है कि उनका नाम सूची में है या नहीं और कौन कौन से अस्पताल इसमें जुड़े हैं। वेबसाइट पर एक चैटबॉट भी है जिसमें आप बस अपना सवाल टाइप कीजिए और तुरंत जानकारी सामने आ जाती है, जैसे किस अस्पताल में इलाज मिलेगा, कौन सी बीमारी कवर है, कार्ड की स्थिति क्या है, सब मिनटों में पता चल जाता है। यानी अब लोगों को अस्पताल के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस मोबाइल उठाएं और जरूरी जानकारी वही मिल जाएगी।
0: लेकिन भाभी, अगर किसी को अपने आसपास आयुष्मान पीएमजेएवाई का अस्पताल खोजना हो तो सबसे आसान तरीका क्या है?
1: इसके लिए आयुष्मान सारथी मोबाइल ऐप सबसे बढ़िया है। इस ऐप में सब कुछ है। पहले ऐप खोलें, इसके बाद अपनी पसंद की भाषा चुनें, फिर जिस तरह की बीमारी के लिए विशेषज्ञ चाहिए वो विशेषज्ञता चुनें। अब आप चाहें तो जिले के आधार पर खोजें या फिर अपने आसपास की दूरी के आधार पर अस्पताल चुनें। जैसे ही आप अस्पताल चुनते हैं तुरंत गूगल मैप्स खुल जाता है। अब आप रास्ते का पालन करें और मैप आपको सीधे आयुष्मान पीएमजेएवाई वाले अस्पताल तक पहुंचा देगा। आयुष्मान सारथी ऐप हर समय हर जगह नजदीकी अस्पताल दिखाकर लोगों की मदद करता है।
0: ठीक है भाभी, आयुष्मान पीएमजेएवाई तो बहुत ही अच्छी योजना है। आप तो रोज लोगों से मिलती हैं, तो लोगों को इससे क्या फायदा हुआ है?

0: भरोसा दिया है कि गरीब आदमी भी सम्मान के साथ बिना डर के बड़े से बड़ा इलाज करा सकता है।
1: तो दोस्तों, आयुष्मान पीएमजेबीवाई योजना ने बाकी लाखों गरीब परिवारों की मदद की है। कई लोग जो पहले महंगे इलाज का नाम सुनकर ही घबरा जाते थे, आज बिना पैसे दिए बड़े अस्पतालों में भर्ती होकर सर्जरी करवा पा रहे हैं। श्रोताओं, हमारा मकसद भी यही है कि आप तक वो सारी बातें पहुंचें जो आपकी जिंदगी में काम आए, आपकी सेहत सुरक्षित रहे और वक्त पर सही फैसले लेने में मदद करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे सेहत सही लाभ कई के अगले एपिसोड के साथ, भरोसेमंद और काम की जानकारी लेकर। पर जाने से पहले लेंगे सेहत की शपथ।
2: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे।
3: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे।
2: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
3: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
2: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
3: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
2: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
3: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
2: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
3: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
2: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
3: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
2: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
3: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
2: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा, तभी भारत समृद्ध बनेगा।
3: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा, तभी भारत समृद्ध बनेगा।
2: सेहत सही तो लाभ कई।
3: सेहत सही तो लाभ कई।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। लेकर हाजिर हूं आपका वही मनपसंद प्रोग्राम जिसका नाम है सेहत सही लाभ गई। और आज हम एक अहम विषय पर बात करने वाले हैं। जी हां, नवजात मतलब न्यू बॉर्न बच्चों की जिंदगी से जुड़ा हुआ आज का हमारा एपिसोड है। लेकिन इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। दोस्तों, हमारे गांव की गुड़िया बहन ने एक दिन एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे का वजन थोड़ा कम था और वो दूध भी ठीक से नहीं पी रहा था। घर वालों को लगा कि ठंड लग गई होगी। 2 घंटे ऐसे ही बीत गए, तभी उनकी पड़ोसन ने कहा, अरे बहन, पास के अस्पताल में NBSU है, चलो वहीं दिखाओ। और जैसे ही बच्चा वहां पहुंचा, वामर लगाया गया, दूध पिलाने में मदद मिली और कुछ ही घंटों में बच्चा थोड़ा संभल गया। अगर वो वहीं घर पर इंतजार करती रहती न जाने क्या हो जाता। इसीलिए आज हम समझेंगे कि NBSU और SNCU कैसे हमारे नवजात बच्चों की जिंदगी बचाते हैं। और इन सब पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है आपके जाने पहचाने और सबके अपने गांव के स्वास्थ्य साथी सेहतिया सिंह।
1: धन्यवाद आरजे बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए और बहुत बहुत प्यार गांव के सारे माता पिता और श्रोताओं को। आपने बिल्कुल सही समय पर बात उठाई है दोस्तों। नवजात बच्चे नन्हे जरूर होते हैं पर उनकी बीमारी बहुत तेजी से बढ़ती है। लेकिन कपूर साहब, मैं एक बात कहना चाहूंगा
0: जी।
1: हमारा फर्ज बनता है कि हम बच्चों का और विशेषकर अपने बुजुर्गों का हर समय ख्याल रखें।
0: तो भैया, अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। और मैं आपसे जानना चाहूंगा, हमारे सुनने वाले भी, हमारे समुदाय के लोग भी जानना चाहते होंगे कि आखिर NBSU और SNCU में क्या समानताएं हैं।
1: देखिए आरजे साहब, ये दोनों यूनिटें एक ही मकसद के लिए बनी हैं, नवजात बच्चे की जान बचाने के लिए। पहली बात, दोनों

0: शून्य से 28 दिन के बच्चों की देखभाल करते हैं। दूसरी बात, दोनों में तुरंत जांच, तापमान नियंत्रण और प्राथमिक उपचार उपलब्ध होता है। तीसरी, दोनों का लक्ष्य नवजात मृत्यु कम करना है, और चाहे NBSU हो या SNCU, दोनों में माँ का दूध, कप चम्मच से दूध और KMC यानी कि कंगारू मदर केयर बहुत महत्व रखती है। साथ ही दोनों ही यूनिटें सरकार की नवजात देखभाल गाइडलाइन के हिसाब से चलती हैं।
1: लेकिन सियातिया भैया, सबसे बड़ा सवाल, फर्क क्या है दोनों में?
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ। फर्क तो है, पर समझना आसान है, और आसान शब्दों में मैं आपको बता रहा हूँ। पहला तो देखभाल का स्तर NBSU बुनियादी देखभाल देता है, जैसे कम वजन, हल्का सांस का दिक्कत, दूध न पी पा रहे हो या ठंड लग जाए। लेकिन SNCU ये गंभीर नवजात के लिए है, जहां सेप्सिस, सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, दौरे, बहुत कम वजन या प्री टर्म बच्चों का इलाज होता है।
1: और सियातिया भैया, दोनों की लोकेशन भी अलग होती है?
0: हाँ बिल्कुल, NBSU हमारे CHC या सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में होता है, यानी गांव के करीब। SNCU जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज में, जहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं।
1: और भैया, इसके अलावा सुविधाओं और बेड में भी फर्क होता होगा?
0: सही कहा आरजे साहब, NBSU में 4 से 6 बेड, वार्मर, ऑक्सीजन, सक्शन, ग्लूकोज और शुरुआती दवाएं। वहीं SNCU 12 से 20 बेड, CPAP, एडवांस मॉनिटर्स, फोटोथेरेपी, इन्फ्यूजन पंप्स और गंभीर बीमारी का पूरा सेटअप।
1: इसके अलावा भैया, स्टाफ का अंतर भी समझा दीजिए।
0: भाई क्यों नहीं, NBSU में स्टाफ नर्स और मेडिकल ऑफिसर होते हैं, और SNCU में बाल रोग विशेषज्ञ, ट्रेन नर्सेज और स्किल्ड न्यूनेटल केयर टीम होती है।
1: अच्छा भैया, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कितने दिनों के लिए बच्चा इसमें रहता है?
0: भाई NBSU में अक्सर कुछ घंटों से लेकर 1 से 2 दिन, SNCU में कई दिनों से लेकर 2 से 3 हफ्ते भी लग सकते हैं।
1: और रेफरल सिस्टम?
0: यानी NBSU में अगर बच्चा स्थिर न हो तो वहीं से 102 या 108 एम्बुलेंस से SNCU रेफर किया जाता है। SNCU अंतिम स्तर है, बहुत ही कम मामलों में आगे भेजना पड़ता है।
1: अच्छा भैया, अब एक कहानी और सुनाइए ताकि श्रोता समझ सके कि समय पर सही यूनिट चुनना कितना जरूरी है।
0: मेरे पास एक याद हमेशा रहती है भाई। एक बार सुशीला और रमेश अपने नवजात बच्चे को NBSU लेकर आए। बच्चा हल्का ठंडा पड़ गया था और दूध नहीं पी पा रहा था। टीम ने उसे वार्मर में रखा, दूध पिलाने में मदद की और कुछ ही घंटों में बच्चा ठीक हो गया। पर वहीं सुगम और उसकी पत्नी विमला ने देर कर दी। बच्चा पहले से ही गंभीर था और उन्हें सीधे SNCU जाना पड़ा। वहाँ टीम ने पूरी मेहनत की, CPAP लगी, दवाएं दी और कई दिन बाद बच्चा ठीक होकर घर आया। तो आरजे बाबू, इन दोनों कहानियों से इतना ही पता चलता है कि NBSU बच्चे की पहली सुरक्षा है और SNCU उसकी उन्नत सुरक्षा। दोनों मिलकर हजारों बच्चों की जान बचाती हैं।
1: बिल्कुल, बहुत ही सुंदर बात कही आपने सियातिया भैया। तो श्रोताओं, याद रखिए, बच्चा हल्की समस्या में है तो NBSU, और यदि आपको लगे कि बच्चा गंभीर दिख रहा है तो SNCU। बस देरी ना करें, नवजात का एक एक मिनट जीवन का फैसला कर सकता है। हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए और सुनते रहिए आपका अपना कम्युनिटी रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM। फिलहाल के लिए नमस्कार।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: Solo Sharda.
6: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
7: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
8: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
9: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
7: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। किसान मित्रों, खेती तो आप करते ही हैं और बड़ी लगन के साथ करते हैं, लेकिन आजकल का जो समय है वो परिवर्तित हो गया है। आप देख भी रहे होंगे, अगर हम बात जलवायु परिवर्तन की करें तो उसका भी सामना आप कर ही रहे होंगे। तो ऐसे में हमें ज़रूरत है तकनीकी जानकारी की, उन्नतशील

बीजों की। और हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो जो आपको सलाह देते हैं उनके अनुसार खेती करने की, और इसके साथ ही हमें समय के साथ कदम से कदम मिला के चलने की भी आवश्यकता है, और इसके लिए हमें खेती के साथ साथ अन्य काम भी हैं वो करना भी जरूरी है। बहुत से किसान भाई सिर्फ खेती पर ही निर्भर रहते हैं तो ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ खेती करेंगे तो कहीं ना कहीं खेती आपको घाटा देगी, आपके लिए घाटे का सौदा बन सकती है, क्योंकि जब खेती में घाटा हो जाता है तो उसकी भरपाई फिर आप कहीं से नहीं कर पाते। लेकिन जब आप खेती के साथ साथ पशुपालन करते हैं या कोई और उद्योग करते हैं, स्वरोजगार करते हैं, तो उसकी भरपाई आपकी हो जाती है और आप आर्थिक संकट से बच जाते हैं। तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि खेती तो आप करिए करिए, साथ ही साथ कोई ना कोई आप स्वरोजगार करिए, पशुपालन करिए, और भी बहुत से काम हैं जैसे मधुमक्खी पालन है, आपका मछली पालन है। और आजकल तो हमारे किसान भाई जो जैविक खेती की हमारी सरकार सिफारिश कर रही है उसके लिए जैविक खाद का प्लांट भी लगा रहे हैं, तो खुद की खेती के लिए भी खाद काम आता है और आप उसको बेच भी सकते हैं, तो इस तरह से भी आप फायदा ले सकते हैं। तो जरूरी यही है कि आपको तकनीकी जानकारी का होना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उनका जानना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक आप सरकारी योजनाओं के बारे में नहीं जानेंगे तो उनका लाभ भी आप नहीं उठा सकते। जैसे आपको याद दिला दें कि सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना चल रही है जिसका नाम है न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, जिसको आप MSP के नाम से जानते हैं। तो ये भी योजना इसीलिए चलाई जा रही है ताकि आपके सामने आर्थिक संकट ना आए, आपकी जो खेती में लाग लगी है वो निकले, साथ ही साथ आपको फायदा हो। तो ये जो MSP है हमारे किसान भाइयों के लिए सालों से चल रही है। मान लीजिए अगर कभी फसलों की कीमत बाजार के हिसाब से गिर भी जाती है तब भी सरकार फसलों को MSP पर ही हमारे किसान भाइयों से खरीदती है ताकि हमारे किसान भाइयों को नुकसान से बचाया जा सके। और किसान मित्रों आपको बता दें कि सरकार ने अन्न की कमी से बचाने के लिए सबसे पहले गेहूं पर MSP शुरू की थी ताकि सरकार हमारे किसान भाइयों से गेहूं खरीद कर गरीबों को बांट सके। किसान मित्रों आपको बताना चाहूंगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP सरकार द्वारा हमारे किसान भाइयों को अपनी फसल के लिए तय किया गया न्यूनतम मूल्य है। ये किसान भाइयों को उनकी फसल को बाजार में कम दाम पर बेचने से बचाता है, या यूं कह सकते हैं, आपको मैं सरल शब्दों में समझाना चाहूं तो मान लीजिए कि किसी फसल का MSP 20 रुपये प्रति किलो है और बाजार में वो 15 रुपये प्रति किलो में बिक रही है, तब भी सरकार किसानों से उस फसल को 20 रुपये प्रति किलो में ही खरीदेगी। तो आपको अब MSP का जो मतलब है वो समझ आ गया होगा। और भी MSP के क्या क्या फायदे होंगे तो ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन कार्यक्रम खेत खलियान का एक हिस्सा ये भी होता है कि हमारे किसान भाइयों को जानकारी मिलती रहे, सरकार की जो कल्याणकारी योजना है उनके बारे में पता चलता रहे, और खेती में जो नई नई तकनीकें आ रही हैं, जो नए नए बीज आ रहे हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिले, और जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनकी सलाह क्या है हमारे किसान भाइयों के लिए उसकी भी जानकारी आपको मिलती रहे, साथ ही साथ आपका मनोरंजन भी होता रहे। तो इसी क्रम में आपको सुनवाते हैं एक उपदेश, कलाकार हैं तरुण बालियान।

0: तो किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे तरुण वालियान से ये उपदेश, और आज हम बात कर रहे हैं कार्यक्रम खेत खलियान में MSP की, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की। और इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि MSP होती क्या है और हमारे किसानों के लिए क्यों ये फायदेमंद है। तो एक बार फिर से आपको याद दिला देते हैं कि वित्तीय उतार चढ़ाव से हमारे किसान भाइयों को बचाने के लिए ये एक मूल्यवान उपकरण की तरह काम करता है। क्या? MSP। इसके अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP हमारे किसान भाइयों को बाजार और प्राकृतिक आपदा जैसी अनिश्चितताओं से बचाने के लिए काम करता है। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है हमारे किसान भाइयों के लिए। और किसान मित्रों, आपको ये भी बता दें कि हम वर्तमान समय की बात करें तो 23 फसलें हैं जिन्हें MSP मिलता है, यानी कि MSP पर सरकार खरीदती है। इन फसलों में बाजरा, गेहूं, मक्का, धान, जौ, रागी और ज्वार के साथ साथ अरहर, चना, उड़द, मूंग और मसूर जैसी दालें और कुसुम, सरसों, नाइजर बीज, सोयाबीन, मूंगफली जैसी तिलहन शामिल हैं। साथ ही तिल और सूरजमुखी, इनके अलावा कपास, खोपरा, कच्चा जूट और गन्ने को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP मिलता है। वैसे तो हमारे बहुत से किसान भाई इस योजना का लाभ उठा रहे होंगे, लेकिन जो किसान भाई अभी तक इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, तो उनको क्या करना है? उनको करना कुछ नहीं, बस आप अपने नजदीकी जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहां पर जाइएगा और जो भी वहां अधिकारी हैं उनसे आप मिलिएगा और वो आपको बता देंगे कि किस तरह से आप MSP पर अपनी फसल बेच सकते हैं और आर्थिक संकट से उभर सकते हैं। तो इन सब बातों का किसान मित्रों आप जरूर ध्यान रखिएगा। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं एक रागनी, जैसा कि आप चाह रहे होंगे कि भाई जानकारी के साथ साथ हमें मनोरंजन भी मिलता रहे, हमें रागनी, उपदेश, लोकगीत भी सुनने को मिलते रहें। तो आपकी इच्छाओं का सम्मान करते हुए एक रागनी आपको सुनवाते हैं और कलाकार हैं पप्पू भारती और ऋषिपाल खदाना। और किसान मित्रों, किस्सा रहेगा राजा हरिश्चंद्र का।
1: किस

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे पप्पू भारती और ऋषिपाल खदाना से ये रागनी, किस्सा था राजा हरिश्चंद्र का। किसान मित्रों, कार्यक्रम खेत खलियान का उद्देश्य हमारा यही है कि आपके जीवन में खुशहाली आए, और ये खुशहाली तभी आएगी जैसा कि हम आपको बताते चले आ रहे हैं कि आप आज के समय के अनुसार अपनी खेती कीजिए और जो सरकार आपके लिए कल्याणकारी योजना चला रही है उनका आप लाभ लीजिए। साथ ही साथ हमारे जो वैज्ञानिक हैं आपको समय समय पर तकनीकी जानकारी देते हैं कि आज के समय के अनुसार हमें बीज का चुनाव कैसे करना चाहिए, अपनी मृदा की जांच क्यों कराना जरूरी है, जैविक खाद का उपयोग करना क्यों जरूरी है, ये बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना है और साथ ही साथ उनको उपयोग में भी लाना है। किसान मित्रों, एक और समस्या हमारे घरों में देखी जाती है कि जो बेटियां हैं बड़ी होती हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों को सोचना पड़ता है कि धन की व्यवस्था कैसे की जाए। बेटी को पढ़ाना है, उनकी शादी करनी है, तो धन की आवश्यकता तो पड़ती ही पड़ती है। तो ऐसे में हमारे जो किसान भाई हैं वो बड़े चिंतित हो जाते हैं अपनी बेटियों को लेकर के। तो इन्हीं सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार एक बहुत ही अच्छी योजना हमारी बेटियों के लिए चला रही है जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। भारत सरकार द्वारा बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शुरू की गई ये एक छोटी बचत योजना है। तो किसान मित्रों, ये बहुत ही अच्छी योजना है छोटी बच्चियों के लिए। और बात करते हैं अब इसकी पात्रता की, तो जो बच्चियां 10 साल से कम उम्र की हैं उनके नाम पर खाता खोला जा सकता है और एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये आप जमा कर सकते हैं और अधिकतम की बात करें तो 1.5 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं। और जो पैसा आप जमा करते हैं इस खाते में उस पर हर साल 8.2% का ब्याज मिलता है। और आपको बता दें कि खाता खोलने की तारीख से 15 साल तक इसमें आप पैसे जमा कर सकते हैं और ये खाता 21 साल में परिपक्व हो जाता है। और बालिका की आयु 18 वर्ष हो जाने के बाद या फिर 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए जो आपने पैसा जमा किया है उसमें से 50% तक आप निकाल सकते हैं। किसान मित्रों, यहाँ पर आपको ये भी जानना बहुत जरूरी होगा कि एक बालिका के नाम पर केवल एक ही खाता खोला जा सकता है और एक परिवार में अधिकतम 2 बालिकाओं के खाते खोले जा सकते हैं। आपके नजदीकी जो भी डाकघर है या जो भी अधिकृत बैंक है वहां जाकर के आप अपनी बच्ची का खाता खुलवा सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। बहुत ही अच्छी योजना है ये बच्चियों के लिए, इसका लाभ आप जरूर लें। अभी तक आपने अपनी बच्चियों का खाता नहीं खुलवाया है और जिनकी उम्र 10 साल से कम है तो जरूर इस योजना के अंतर्गत खाता खुलवाएं ताकि आपको भविष्य में अपनी बेटी की शादी की चिंता ना हो या उनको कोई उच्च शिक्षा दिलवानी है उसकी भी चिंता आपको नहीं होगी, क्योंकि तब तक बेटी के खाते में धन की अच्छी व्यवस्था हो जाएगी तो आप शादी भी अच्छे से कर पाएंगे और उनको पढ़ा भी अच्छे से पाएंगे। तो इन सब बातों का जरूर आप ध्यान रखें। और देखिए, अब चलते चलते आपका करवाते हैं मनोरंजन और आपको सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं प्रियंका चौधरी।

तो किसान मित्रों, प्रियंका चौधरी द्वारा गाए गए इसी उपदेश के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: परिवार नियोजन के बारे में फिल्म अभिनेता सचिन क्या कहते हैं, जरा सुने।
2: परिवार उतना ही हो जिसको आप सही शिक्षा दे सके, बेहतर जीवन दे सके और स्वस्थ रख सके। परिवार छोटा होगा, बच्चों के जन्म में अंतर होगा, तो माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। आज तो अनेक उपाय भी है, कॉन्डोम है, कॉपर टी है, गोली है। डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह से ही कोई भी एक उपाय चुन लीजिए। स्वस्थ भारत की शुरुआत होती है स्वस्थ परिवार से, आपसे।
1: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन।
3: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने वाले हैं डाइजेशन के विषय में। अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत है तो निश्चित तौर पर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो नहीं सकती, लेकिन अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत नहीं है, डाइजेशन सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है, तो दिक्कतें परेशानी आपके सामने आती रहेगी। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही कि खराब से खराब डाइजेशन को एक दिन में सुधार देंगे यानी कि ये 5 जूस। वो कौन कौन से 5 जूस हैं जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, और जूस पीने का सही तरीका भी। चलिए विस्तार से बात करते हैं। खराब डाइजेशन कई बीमारियों का कारण बन सकता है, इसलिए डाइजेशन को दुरुस्त रखने के लिए 5 हेल्दी जूस जरूर पिएं। बेहतर पाचन के लिए हेल्दी जूस बहुत आवश्यक है। पाचन से जुड़ी समस्याएं बहुत असहज हो सकती हैं, काफी दर्दनाक भी, लेकिन बहुत से तरीकों से इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसा करने का एक सबसे आसान तरीका है हेल्दी जूस पीना, जो विटामिन, मिनरल्स और डाइजेस्टिव एंजाइम से भरपूर होते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी हेल्दी जूस के बारे में जो आपके पाचन तंत्र

0: के लिए काफी लाभदायक हो सकते हैं। बात करते हैं अदरक का जूस के विषय में, तो बात सामने आती है कि अदरक का जूस एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है जो पेट के डिस्कम्फर्ट से राहत दिलाता है और हेल्दी डाइजेशन होने में मदद करता है। अदरक का जूस बनाने के लिए आपको अदरक छील लेना है और उसे छोटा छोटा काट लें। अब थोड़े से पानी के साथ इसे ब्लेंड कर लें और इसके पल्प को छान लें। आप स्वादानुसार नींबू का रस या फिर शहद भी मिला सकते हैं, इससे ये आपको कड़वा नहीं लगेगा। अब बात अनानास का जूस। जी हाँ, अनानास में ब्रोमेलिन नाम का तत्व अधिक मात्रा में होता है जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सकता है और इन्फ्लेमेशन कम करने में सहायक होता है। अनानास के जूस का सेवन करने से पाचन में लाभ मिल सकता है और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। आपको केवल ताजा अनानास लेना है, उसे थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। अब इसे छानकर पी सकते हैं। अब बात नींबू के रस की। नींबू का रस भी प्रकृति में अम्लीय होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। नींबू की साइट्रिक प्रकृति गुर्दे की पथरी की संभावना को कम करने में मदद करता है। बात एलोवेरा जूस की। एलोवेरा अपनी हीलिंग गुणों के लिए जाना जाता है। इससे इन्फ्लेमेशन कम होने में मदद मिलती है। इससे पेट में हेल्दी बैक्टीरिया का उत्पादन बढ़ता है और पाचन में भी मदद मिलती है। आपको केवल एलोवेरा जेल को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। गाजर का जूस। गाजर में फाइबर अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है और ये पाचन तंत्र को रेगुलेट करने में मदद करता है। इससे हेल्दी बाउल मूवमेंट्स में भी मदद मिलती है। अगर आप इसे नियमित रूप से पीते हैं तो पेट में इन्फ्लेमेशन भी कम हो सकती है और पेट में हेल्दी बैक्टीरिया के उत्पादन में भी मदद मिलती है। आपको केवल गाजर को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड करके छान कर पी लेना है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।
1: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 एफएम सुनो शारदा।

सावित्री सत्यवान के साथ साथ और सत्यवान की उस झोपड़ी में पहुंच गई कि जहां सत्यवान के अंधे माता और पिता विश्राम कर रहे थे। तो दोस्तों, किस तरह से आहट सुनकर के सत्यवान की माँ सत्यवान को कुछ कारण लग गई, क्यों कि बगैर सत्यवान के तो बड़ा मुश्किल टाइम कटा करता था माँ बाप का, भला कैसे प्यार में

0: तुम्हारी पुत्र वधु सावित्री भी है।
1: अच्छा, किसे मैं वर के लाया हूँ?
2: अरे तेरा तो ब्याह भी नहीं हुआ अभी। अरे
0: लेकिन माता जी सारे भेद बता।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन, आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। हिंदुस्तान की परंपरा यही रही है कि हिंदुस्तान में नारियों को पूजा जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। लेकिन जब कहीं कहीं कोई घटना घट जाती है जहां नारी का अपमान होता है तो दिल बहुत दुखित होता है। सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट संस्था मिलकर एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है हिंसा को नो। इसके अंतर्गत बहुत सारे विषय हैं जिसके बारे में हम लगातार बात करते आ रहे हैं और बातें करते रहेंगे। यूं कहें कि कुछ खास बिंदुओं को हमने उठाया है और उस विषय पर हम बातें करेंगे। जैसे बेटियां हैं तो वंश है, प्रजनन अधिकार, इसके अंतर्गत बातें आती हैं, भ्रूण हत्या, लिंगानुपात, बेटे होने पर उत्सव और रिवाज। दूसरा विषय बालिका या वधु, इसके अंतर्गत बात आती है बचपन का हनन, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना। तीसरा विषय खतना, धर्म नहीं दर्द, इसके अंतर्गत बातें सामने आती हैं बाल उम्र में शारीरिक दर्द, रिवाज और विश्वास, कानूनी सलाह, पितृ सत्ता, असमान व्यवहार, असमान दिशा, बातें होंगी भेदभाव और समान दर्जा, शिक्षा से वंचित, एक ऐसा विषय है माँ

मुझे बाहर जाना है। इसके अंतर्गत बातें आती हैं कि घर और आस पड़ोस के दायरे, घर या घर के बाहर सवालिया सुरक्षा। विषय ये भी है कच्ची उम्र की शिक्षा, यानी बदलती शारीरिक संरचना और किशोरावस्था में अपराधी मानसिकता से बचने हेतु सीखने योग्य बातें। कैसे बचे मनचलों से, बातें होंगी इंटरनेट का जाल, अच्छा स्पर्श बुरा स्पर्श, ब्लैकमेल, रिश्तेदारों द्वारा छेड़खानी और चुप्पी, ये बातें होंगी कैसे बचे मनचलों के अंतर्गत। दहेज प्रथा या हत्या, इसके अंतर्गत बात सामने आती है दहेज प्रथा के दुष्परिणाम, सामाजिक हैसियत का दिखावा। अगला विषय मेरी पत्नी मेरा अधिकार, यानी वैवाहिक बलात्कार, शारीरिक हिंसा, मानसिक बलात्कार। ये कुछ ऐसे विषय हैं, कुछ ऐसी थीम है जिसके अंतर्गत हम बातें आपके सामने लेकर आएंगे एक रिसर्च के माध्यम से। सुनो श्रादा 90.8 FM ने हाथ मिलाया है रेडियो अमेठी के साथ, और रेडियो अमेठी ने हाथ मिलाया है हमारे साथ, यानी सुनो श्रादा 90.8 FM के साथ एक समझौते के तहत एक दूसरे के कार्यक्रम हम यहां से प्रसारित कर रहे हैं और हमारे कार्यक्रम वो अपने स्टेशन से प्रसारित कर रहे हैं। तो रेडियो अमेठी का धन्यवाद करते हुए आइए सुनते हैं हिंसा को नो के अंतर्गत ये खास कार्यक्रम।

0: एक खास कार्यक्रम हिंसा को नो, जिसका उद्देश्य है घरेलू हिंसा और महिला उत्पीड़न जैसी कुरीतियों को समाज से दूर हटाना और लोगों को इसके बारे में जागरूक करना। मैं बोल रही हूँ श्रेया और आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है हिंसा को नो। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे हिंसा के बारे में। अगर हम बात करें छेड़छाड़ की, तो आप लोगों को क्या लगता है, छेड़छाड़ सिर्फ लड़कियों और महिलाओं के साथ में बस, मेट्रो, ट्रेन, ऑटो रिक्शा, ऑफिस, इन्हीं जगहों पर होती है क्या? जी नहीं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ या आप कह सकते हैं हिंसा घर पर भी होती है। इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन कभी कभार कुछ लोग समझ ही नहीं पाते कि उनके साथ हिंसा हो रही है, क्योंकि उनके लिए हिंसा सहना आम बात हो जाती है। आइए अपने समुदाय के लोगों से जानते हैं कि घर पर भी हिंसा किस प्रकार होती है, किस वजह से होती है। घर पर महिलाओं से मारपीट करना सिर्फ यही एक हिंसा नहीं है, इसके अलावा और भी तरीके हैं महिला को नुकसान या चोट पहुंचाने के। आइए सुनते हैं।
1: मेरा नाम अरुणा चावला है, मैं दिल्ली NCR में रहती हूँ और मैं आपको बताऊंगी कि घरेलू हिंसा कैसे होती है। एक्चुअली मेरी ताई जी थी, तब हम बहुत छोटे थे, उनकी कोई औलाद नहीं थी और औलाद हो भी नहीं सकती थी, क्योंकि उस टाइम साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी कि सैरोगेसी वगैरह से या टेस्ट ट्यूब बेबी किया जा सके। तो उनकी सास यानी कि मेरी दादी मेरी ताई जी को बहुत ताने देती थी। ताई जी चुपचाप सुनती रहती थी, अपने मन के ऊपर उन्हें कैसा लगता था, हम तो बहुत छोटे थे, उनको ही पता होगा कि उनको कैसा लगता था। जब हम बड़े हुए तो हमें पता चला कि जो जो बीमारी थी, जो बच्चा पैदा नहीं हो सकता था या जो कमी थी, वो मेरी ताई जी के अंदर नहीं थी, मेरे ताऊ जी के अंदर कमी थी, इस वजह से वो बच्चा पैदा नहीं कर सकते थे। मेरी दादी कहती थी मेरी ताई जी, मेरे ताऊ जी को कहती थी कि तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन ताऊ जी नहीं चाहते थे दूसरी शादी करना, लेकिन ताई जी वो, लेकिन दादी जो है बार बार उनको ताने देती थी। लेकिन मेरी एक्चुअली मेरी ताई जी जो है मेरे ताऊ जी को बचा रही थी कि किसी को पता ना चले कि कमी जो बीमारी है वो मेरे अंदर नहीं है बल्कि ताऊ जी के अंदर है। इस वजह से ये सब देखना पड़ा पहले। ये सब जब मेरी दादी उनको इतने ताने देती थी तो मेरी ताई जी के मन पर बहुत बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता था। कई बार वो डिप्रेशन में चली जाती थी, कई बार उनका सुसाइड करने का मन करता था। तो लेकिन ताऊ जी ने उन्हें इतना प्यार दिया, इतना मान सम्मान दिया, तो जिस वजह से उन दोनों का आपस का रिश्ता बहुत अच्छा रहा।
2: मैं रहती हूँ सदरपुर में, मेरा नाम है अलका। और घरों में जो हिंसा होती है मैंने कई जगह देखा है, पति दारू पीता है, लड़ाई करता है, बीवी कमा भी रही है फिर भी झगड़ा करता है, तो वो सब नहीं होना चाहिए। लेडीजों को अपने लिए सपोर्ट के लिए बोलना चाहिए।
0: सास किस तरीके से हिंसा करती है या घर में जो ननंद होती है वो किस तरीके से हिंसा करती है, इस बारे में भी हमें बताएं।
2: तो वो तो कभी कर ये काम गलत हो गया, वो काम गलत हो गया, ऐसे बोलते हैं कि टॉर्चर करते हैं। ननद अलग को टॉर्चर करा है, सास अलग को बोला है, यही बोलती हैं,
0: कमियां निकालते हैं,
2: कमियां निकालते हैं।
0: और जेठ जेठानी,
2: मतलब जेठ जेठानी बोले तो मतलब बर्दाश्त कहाँ तक इंसान करेगा, ठीक है। तो उनको बोलना चाहिए लेडीजों को,
0: लेडीज़ को बोलना चाहिए जिनके साथ हिंसा हो रही है,
2: उनको बोलना चाहिए, लेडीज
0: आवाज़ उठानी चाहिए।
2: हाँ, आवाज़ उठानी चाहिए।
3: मेरा नाम पिंकी देवी है, दिल्ली NCR के रहने वाले हूँ। घर में हिंसा कैसे होती है वो बताने वाले हूँ। जैसे कि गरीब घर की लड़की रहती है, अमीर घर के लड़का रहते हैं, तो उसका माँ बाप तो बहुत गरीब रहती है, तो वो सोचता है जब अमीर घर में मेरा बेटी चल जाएगी तो सुख शांत से रहेगी, वहाँ थोड़ा बहुत पढ़ाई भी करेगी, अच्छा आदमी है, अच्छा सास ससुर है। मगर ये तो ना देखी जो वो अच्छा है कि ना है, ये तो ना दिमाग में आई। मगर फिर भी वो शादी कर देती है। करने के बाद बस एक दिन हो गई, दो दिन हो गए, बहुत अच्छा से रखी। फिर चौथा दिन फिर का उसका सास था, तो सास जानी की बोला, अरे तुम्हारा तो ऐसे मौज जिंदगी जी रही हो, ऐसी थोड़ी ना होगी, थोड़ा बहुत रुपया पैसा चाहे कोई चीज हो तो अपना मैके से ले आओ। तो बोला, माँ जी मैं मैके से ले आओ, मेरा बाप और माँ बहुत गरीब है, मैं कहाँ से लेके आऊंगी। ऐसे बताया तो उसको क्या किया, जैसे कि तेरा बाप तो वो नहीं दे गई, कुछ तो दिया नहीं, तो मैं तेरा सुख शांति से कैसे रखूं, ऐसे ताना दिया उसका सास ने। फिर उसका आदमी गए, आदमी को बोला गया, जैसे कि आपका माँ ऐसे ऐसे बात बोल रही है, तो मेरा माँ बाप तो जरूर गलती था, गरीब था, तो गरीब के फायदा तो आप लोग ऐसे उठाओगे, जब मैं माँ बाप के छोड़ के आ गई, आप सब ले मैं रहती हूँ, रोटी बनाती हूँ, कपड़े आपको धोती हूँ, सारे घर के गृहस्थी के काम करके देती हूँ, अब तो नौकर बन गई हूँ मैं, तो थोड़ा बहुत आपका ऊपर है, आप तो थोड़ा हेल्प कर दो। तो उसका आदमी क्या जवाब दिया, जो माँ कहेगी वही करना, जो मेरा बहन कहेगी वही करना पड़ेगी। न उसका सास दिए साथ, न उसका आदमी दिए साथ, न उसका ननद दिया साथ, अब लड़की क्या करेगी अकेले। मैं बाप उसका गरीब था और वो बेचारी रोता रहा रोता रहा, भगवान अपना जिंदगी में मैं क्या करके आई हूँ, ऐसे मेरा पति भी मिल गई, ऐसे मेरा सास भी मिल गए। जब उसका पति उस पर हक जताना पर लगी, जैसे मैं जो कहूंगा वही करना पड़ेगा, न तो मार के फेंक दूंगी, काट दूंगी। जब वो लड़की पढ़ने के लिए सोचता है, जब मैं पढ़ लिख कर थोड़ा आगे बढ़ू, तो उसका आदमी बोलता है, तुम्हें पढ़ने से कोई मतलब ना है, तू घर में जो करता है वो बना खा, तेरा पढ़ के क्या होगा, जैसे घर का काम कर और जो मिलता है वो कर, मैं घर के मर्द हूँ, तुम्हें जो करना है मेरे से पूछ के करना।
0: चलिए दोस्तों, वक्त हो चला है कानून जानने का। अगर कोई महिला या लड़की हिंसा का शिकार होती है, चाहे वो घर में हो या घर से बाहर उसके साथ कोई छेड़छाड़ करता है, तो कानून क्या कहता है इस बारे में, आइए जानते हैं हमारे लीगल एक्सपर्ट श्री प्रमोद कुमार गोयल जी से। वो एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज हैं।
4: गंभीर विषय के अति सरल व प्रभावी प्रस्तुतीकरण परिचय के लिए मनुस्मृति के अध्याय 3 श्लोक 56 में भारतीय संस्कृति के स्वर्णिम दर्शन का उल्लेख किया गया है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है, उनका सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ स्त्रियों की पूजा नहीं होती, उनका सम्मान नहीं होता, वहाँ किए गए समस्त अच्छे कार्य निष्फल हो जाते हैं। मनुस्मृति के अध्याय 3 श्लोक 57 में भी यह संदेश है कि घर परिवार की पुत्रियों, वधुओं, नवविवाहिताओं आदि महिलाओं की प्रसन्नता से कुल सदैव फूलता रहता है, समृद्ध रहता है। एक सभ्य समाज में किसी भी प्रकार की हिंसा व किसी के प्रति भी हिंसा का कोई स्थान नहीं है। घर से बाहर भीड़ भाड़ वाली जगहों व सुनसान और अनजान रास्तों से जब हम घर पहुंचते हैं तो हमें सुरक्षा व शांति का एहसास होता है, लेकिन सुरक्षित माने जाने वाले उसी घर में हिंसा का सामना करना पड़े तो यह न केवल असम्मानजनक जीने के अधिकार का उल्लंघन और विधि का असम्मान है, वरन पारिवारिक संबंधों में सुरक्षा और विश्वास के भाव का भी अनादर है। घरेलू हिंसा एक गंभीर विषय है, क्योंकि जीवन भर साथ निभाने की प्रतिज्ञा करने वाला पति ही अपनी पति के विश्वास को आहत करता है। घर के अंदर निजी पारिवारिक मामलों के नाम पर महिलाओं के साथ हिंसा की घटनाओं से संरक्षण व संविधान के अधीन प्रत्याभूत अधिकारों के अधिक प्रभावी संरक्षण हेतु वर्ष 2005 में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 पारित किया गया था। इस अधिनियम की धारा 3 में घरेलू हिंसा की व्यापक परिभाषा दी गई है, जिसके अनुसार स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, मानसिक या शारीरिक भलाई की अपहानी या क्षति कारित करना अथवा उसे संकटापन करना घरेलू हिंसा है। इसमें शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग तथा आर्थिक दुरुपयोग कारित करना शामिल है। यही नहीं, इसमें दहेज व अन्य किसी संपत्ति या वैल्यूबल सिक्योरिटी का की विरुद्ध मांग भी शामिल है। इस धारा में प्रयुक्त वाक्यांश मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग, अपमान, तिरस्कार, अपशब्दावली, गाली, विशेष रूप से संतान या पुत्र के न होने के संबंध में अपमान व तिरस्कार के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द भी सम्मिलित हैं। वैसे तो हिंसा भारतीय दंड संहिता के अधीन दंडनीय अपराध है और विभिन्न प्रकार की हिंसा के लिए विभिन्न धाराओं में दंड का विधान किया गया है, लेकिन घरेलू हिंसा से व्यथित व्यक्ति के अधिकार और उक्त संबंध में पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट व संरक्षण अधिकारी के दायित्वों का निरूपण घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में ही किया गया है। घरेलू हिंसा से व्यथित महिला को आश्रय, चिकित्सा सहायता, उपचार, परिवार कल्याण विशेषज्ञ की सहायता, साझी गृहस्थी में निवास का अधिकार, संरक्षण आदेश प्राप्त करने का अधिकार, निवास आदेश प्राप्त करने का अधिकार के साथ साथ घरेलू हिंसा से व्यथित व्यक्ति और व्यथित व्यक्ति की संतान द्वारा उपगत व्यय और सहन की गई हानि की क्षतिपूर्ति के लिए धनी अनुतोष का अधिकार भी प्रदान किया गया है। घरेलू हिंसा की सूचना प्राप्त होने पर संरक्षण अधिकारी, पुलिस अधिकारी तथा मजिस्ट्रेट का यह दायित्व है कि वह उसके उक्त अधिकारों से अवगत कराएं, लेकिन पुलिस अधिकारी हिंसा विषयक संज्ञेय अपराध के संबंध में अपने कर्तव्य से अवमुक्त नहीं होगा। इसका तात्पर्य यह है कि अगर वह किसी ऐसी जगह पर उपस्थित है जहां घरेलू हिंसा हुई है या घरेलू हिंसा के संबंध में उसे सूचना प्राप्त हुई है, तो वह घरेलू हिंसा से व्यथित व्यक्ति को उसके अधिकारों से अवगत कराएगा। साथ ही साथ यदि कोई संज्ञेय अपराध कारित किया गया है तो उस संबंध में तत्काल आवश्यक यथाविधिक कार्रवाई भी सुनिश्चित करेगा। घरेलू हिंसा से व्यथित व्यक्ति अधिनियम की धारा 12 के अधीन स्वयं अथवा आपात मामले में संरक्षण अधिकारी अथवा सेवा प्रदाता के माध्यम से अथवा स्वयं द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। यह आवेदन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के अधीन प्रस्तुत किया जाएगा और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 व 202 के अधीन आवश्यक कार्रवाई करते हुए मजिस्ट्रेट उस संबंध में आवश्यक आदेश पारित करेंगे। साथ ही साथ घरेलू हिंसा से संबंधित कोई परिवाद पत्र प्राप्त होने पर संबंधित मजिस्ट्रेट संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता की रिपोर्ट पर विचार करेंगे और उस रिपोर्ट पर विचार करने के उपरांत उक्त आवेदन की सुनवाई की प्रथम तिथि से अधिकतम 60 दिन के अंदर उक्त आवेदन का निस्तारण भी सुनिश्चित करेंगे। धारा 12 की उपधारा 4 में निर्देश है कि आवेदन प्राप्त होने के बाद सुनवाई की प्रथम तिथि नियत की जाएगी जो आवेदन प्राप्त होने की तारीख से सामान्यतः 3 दिन से अधिक नहीं होगी। आवेदन प्राप्त होने पर मजिस्ट्रेट व्यथित व्यक्ति व विपक्षी अथवा दोनों को सेवा प्रदाता के परामर्श, कल्याण विशेषज्ञ की सहायता का निर्देश दे सकता है तथा यदि परिस्थितियों की समग्रता में आवश्यक हो तो यह कार्रवाई और न्यायालय की समस्त कार्रवाई बंद कमरे में की जा सकती है। अधिनियम 2005 की धारा 23 एक पक्षीय व अंतरिम आदेश की शक्ति व अधिकार भी संबंधित मजिस्ट्रेट को प्रदान करता है। यौन आधारित उत्पीड़न व हिंसा के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 354 तथा 509 महत्वपूर्ण प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता की धारा 294 अश्लील कार्य व गानों के लिए दंड का विधान करता है। यदि उक्त अश्लील कार्य, गाना, कथा, गीत या शब्द गायन किसी सार्वजनिक स्थान पर किया जाता है और उससे दूसरे को शोभ होता है, उक्त अपराध के दोषी व्यक्ति को 3 माह तक के कारावास तथा अथवा अर्थदंड से दंडित किया जा सकता है। उक्त अपराध संज्ञेय है और उक्त संज्ञेय अपराध से तात्पर्य है कि उक्त अपराध के अभियुक्त को पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। उक्त अपराध के लिए निर्धारित दंड से यह भी स्पष्ट है कि उक्त अपराध जमानती है, अर्थात अभियुक्त साधिकार जमानत की मांग कर सकता है और उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। उक्त अपराध न्यायिक प्रथम वर्गीय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ही विचारणीय है, किंतु उक्त अपराध शमनीय नहीं है, अर्थात उक्त अपराध के दोषी व्यक्ति से उक्त अपराध से पीड़ित व्यक्ति द्वारा समझौता नहीं किया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 509 के अधीन स्त्री की लज्जा के अनादर व उसकी एकांतता के अतिक्रमण को दंडनीय अपराध बनाया गया है तथा उसके लिए 3 वर्ष तक के साधारण कारावास व अर्थदंड का प्राविधान किया गया है। धारा 509 के अधीन स्त्री की लज्जा के अनादर से तात्पर्य है किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कहे गए ऐसे शब्द, की गई ऐसी ध्वनि, किए गए ऐसे हाव भाव प्रदर्शन, अंग विक्षेपण, वस्तु प्रदर्शन से है जो किसी स्त्री को सुनाने अथवा दिखाने के लिए किए गए हो। उक्त अपराध संज्ञेय है अर्थात उक्त अपराध के अभियुक्त को पुलिस वारंट के बिना ही गिरफ्तार कर सकती है। उक्त अपराध के लिए निर्धारित दंड से यह भी स्पष्ट है कि उक्त अपराध जमानती है अर्थात उक्त अपराध के अभियुक्त को जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। उक्त अपराध भी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्गीय द्वारा ही विचारणीय है और लज्जा के अनादर से पीड़ित महिला पक्षकार न्यायालय की अनुमति से समझौता भी कर सकती है। 294 और 509 के बीच में ये थोड़ा सा एक ये डिफरेंस है। 294 कंपाउंडेबल नहीं है जबकि 509 के अधीन दंडनीय अपराध न्यायालय की अनुमति से शमनीय है। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय व ज्ञान से उस पर किए गए हमले या आपराधिक बल के लिए दंड का विधान करता है। यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की लज्जा भंग करने के आशय से अथवा यह संभाव्य जानते हुए कि तद द्वारा वह उस महिला की लज्जा भंग करेगा हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करता है तो उसे कम से कम 1 वर्ष तथा अधिकतम 5 वर्ष तक के कारावास और अर्थदंड से दंडित किया जाएगा। उक्त अपराध संज्ञेय गैर जमानती तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। उक्त अपराध शमनीय नहीं है अर्थात पीड़ित पक्ष अभियुक्त व्यक्ति से समझौता नहीं कर सकता है। अतः पीड़ित महिला को उक्त अपराध के आरोपी से समझौता अनुज्ञात नहीं है। निर्भया कांड के बाद अंतःस्थापित धारा 354 का लैंगिक उत्पीड़न के घटक कार्यों का उल्लेख करते हुए लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड का विधान करती है। धारा 354 का के अनुसार कोई व्यक्ति निम्न कार्यों से लैंगिक उत्पीड़न करता है, फिजिकल कॉन्टैक्ट इन्वॉल्विंग अनवेलकम एंड एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरचर्स, डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, शोइंग पोर्नोग्राफी अगेंस्ट द विल ऑफ ए वुमेन, मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स। प्रथम तीन कार्यों अर्थात फिजिकल कॉन्टैक्ट इन्वॉल्विंग अनवेलकम एंड एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरचर्स, डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स व शोइंग पोर्नोग्राफी अगेंस्ट द विल ऑफ ए वुमेन के दोषी व्यक्ति को 3 वर्ष तक के कठोर कारावास अथवा व अर्थदंड से दंडित किया जा सकता है किंतु लैंगिक आभासी टिप्पणी मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स द्वारा लैंगिक उत्पीड़न के दोषी को 1 वर्ष तक के कारावास अथवा व अर्थदंड से दंडित किया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 354B जिसमें विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग दंडनीय अपराध बनाया गया है। दंड प्रक्रिया भारतीय दंड संहिता की धारा 354C जिसमें दृश्य रतिकता और 354D जिसमें स्टॉकिंग यानी पीछा करना को दंडनीय अपराध बनाया गया है के विषय में विस्तार से पहले ही श्रोतागण को बताया जा चुका है, इसलिए उसके पुनरावृत्ति की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। प्रोफेसर सुमित्रा सिंह जी, आपने ईव टीजिंग को बहुत ही विस्तार से कवर किया था और उसमें विशाखा के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उल्लेख भी किया था। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आदि बनाम एस समुद्री राम के केस में 30 नवंबर 2012 को जो निर्णय पारित किया था उसमें उसको अगर देखें तो उसमें ईव टीजिंग के संबंध में बहुत विस्तार से टिप्पणियां की गई हैं। उक्त निर्णय के प्रस्तर 31 में माननीय उच्चतम न्यायालय के अनुसार ईव टीजिंग टुडे हैज बिकम परनिशियस हॉरिड एंड डिस्कस्टिंग प्रैक्टिस। द इंडियन जर्नल ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड क्रिमिनलिस्टिक्स जनवरी जून 1995 एडिशन हैज कैटेगराइज ईव टीजिंग इनटू फाइव हेड्स, नेमली वर्बल ईव टीजिंग, फिजिकल ईव टीजिंग, साइकोलॉजिकल हैरेसमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड हैरेसमेंट थ्रू सम ऑब्जेक्ट्स इन विशाखा एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 वॉल्यूम 6 SCC 241. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज लेट डाउन सर्टेन गाइडलाइंस ऑन सेक्सुअल हैरेसमेंट इन रूपन दयाल बजाज एंड अनदर वर्सेज KPS गिल 1995 वॉल्यूम 6 SCC 194. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सप्लेन्ड द मीनिंग ऑफ मॉडेस्टी इन रिलेशन टू वुमेन. मोर एंड मोर गर्ल स्टूडेंट्स वुमेन एटसेट्रा गो टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वर्क प्लेसेस एटसेट्रा एंड देयर प्रोटेक्शन इज ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस टू अ सिविलाइज्ड एंड कल्चर्ड सोसाइटी. द एक्सपीरियंसेस ऑफ वुमेन एंड गर्ल चिल्ड्रन इन ओवर क्राउडेड बसेस, मेट्रोस, ट्रेन्स एटसेट्रा आर एंड ए पेनफुल ऑडियल. माननीय उच्चतम न्यायालय ने परिस्थितियों की समग्रता में निम्न निर्देश निर्गत किए थे. All the state governments and union territories are directed to depute plain clothes female police officer in the precincts of bus stands and stops, railway stations, metro stations, cinema theaters, shopping malls, parks, beaches, public service vehicles, places of worship, etc., so as to monitor and supervise incidents of eve teasing. Number two, there will be a further direction to the state government and union territories to install CCTVs in strategic positions, which itself would be a deterrent, and if detected, the offender could be caught. Number three, person in charge of the educational institutions, places of worship, cinema theaters, railway stations, bus stands, etc., have to take steps as they deem fit to prevent eve teasing within their precincts, and on a complaint being made, they must pass on the information to the nearest police station or the women's help center. Number four, where any incident of eve teasing is committed in a public service vehicle, either by the passenger or the person in charge of the vehicle, the crew of such vehicle shall, on a complaint made by the aggrieved person, take such vehicle to the nearest police station and give information to the police. Failure to do so should lead to cancellation of the permit to ply. Number fifth, state governments and union territories are directed to establish women helpline in various cities and towns so as to curb eve teasing within 3 months. Suitable boards cautioning such act of eve teasing be exhibited in all public places, including precincts of education institutions, bus stands, railway stations, cinema theaters, parks, beaches, public service vehicles, places of worship, etc. Responsibility is also on the passerby, and on noticing such incident, they should also report the same to the nearest police station or to women helpline to save the victims from such crime. Eighth, the state government and union territories of India would be adequate and effective measures by issuing suitable instructions to the concerned authorities, including the district collectors and the district superintendent of police, so as to take effective and proper measures to curb such incidents of eve teasing. यद्यपि उक्त निर्देश वर्ष 2012 में पारित किए गए थे, लेकिन संभवतः टू बी प्रसाइज ऑन 30 नवंबर 2012 को पारित किए गए थे, और संभवतः उक्त निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया है और नहीं किया जा रहा है. पब्लिक प्लेस पर इस प्रकार के कोई भी कार्रवाई प्रदर्शित और परिलक्षित नहीं होती है. मुझे विश्वास है कि आज़ादी के इस अमृत महोत्सव वर्ष में जो यह परिचर्चा आरंभ की गई है वह जन जागृति में सहायक होगी और महिलाओं को उनके अधिकारों से अवगत कराकर उन्हें सशक्त करेगी.
0: मैं आशा करती हूँ कि आपको इस कार्यक्रम हिंसा को नो से बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी और आप लोग इसे अपने समुदाय के साथ भी साझा करेंगे. अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं.
5: कहो हिंसा को नो.
6: सुरुषा द 90.8 FM और स्मार्ट संस्था मिलकर एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है हिंसा को नो. जिस विषय पर आज बात हुई, ऐसे तमाम विषय समय दर समय हम उठाते रहेंगे और आपके बीच लाते रहेंगे. इन खास जानकारियों को सुनना न भूलें. साथ ही साथ हम धन्यवाद कहना चाहेंगे रेडियो अमेठी का, जिसने हमें ये सहयोग दिया। और ये सहयोग हम भी ऐसे ही दूसरे स्टेशनों को समय दर समय दे रहे हैं, क्योंकि वो भी हमारे खास कार्यक्रम अपने स्टेशन से प्रसारित कर रहे हैं। तो ये खास जानकारी आपको कैसी लगी, 01204060205 पर आप हमें कॉल कर बता सकते हैं। इसके अलावा 90.8 FM@sharda.ac.in पर भी आप हमें मेल कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए सुनते रहें ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार।
7: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: मेरा नाम गोलू है, मुन्नी का बड़ा भाई। एक दिन स्कूल से आया तो देखा मुन्नी रो रही थी, सोचा प्यास लगी होगी। मैं भाग की दादी के पास गया, बोला मुन्नी को पानी पिला दो ना। दादी ने एकदम मना कर दिया, बोली 6 महीने तक मुन्नी सिर्फ मम्मी का दूध पिएगी, और कुछ खिलाया पिलाया तो 10 सो सकते हैं। अगली बार मुन्नी रोई ना, मैंने उसके कान पे जाके कह दिया 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का दूध पीना है।
2: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो एक गंभीर विषय है। जी हाँ, पेशाब, जिसे हम कहते हैं मूत्र। अगर इसमें खून आ रहा है तो आप एक परेशानी से जूझ रहे हैं। एक्सपर्ट क्या कहते हैं, क्या समस्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि पेशाब में खून आने की ज्यादातर वजह जैसे कुछ दवाएं, छोटी मोटी चोटें या गुर्दे की पथरी, ये सारी चीजें अस्थाई होती हैं जिनका लंबे समय तक प्रभाव नहीं पड़ता। ज्यादातर लोगों के लिए मूत्र पथ का संक्रमण इलाज योग्य होता है। अगर जल्दी पता लगा लिया जाए तो मूत्र पथ के कैंसर का भी अच्छा पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। मूत्र में रक्त दिखाई देने के अधिकांश मामले आपातकालीन स्थिति नहीं होते हैं। हालांकि यदि आप चक्कर आना, पेशाब करने में असमर्थता या अत्यधिक दर्द जैसे लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। लेकिन जिन लोगों के पेशाब में खून की अधिक मात्रा आ रही है, पेशाब करते समय अधिक दर्द हो रहा है, पेशाब करने में कठिनाई या अक्षमता महसूस हो रही है तो उन्हें उसी समय डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है कि धैर्य रखना क्यों जरूरी है। अगर आप जिंदगी में धैर्य रखते हैं तो निश्चित तौर पर तमाम बीमारियों से आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि धैर्य मन का वो गुण है जिसके होने से मनुष्य विपत्ति के समय भी विचलित नहीं होता है। धैर्य कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति की सहन शक्ति की अवस्था है। ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के मन को क्रोध अथवा खीज जैसी अवगुणों के प्रभाव से बचाती है। धैर्य के तीन गुण क्या हैं? एक्सपर्ट कहते हैं कि आत्मनियंत्रण, स्थिति के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने और बिना किसी शिकायत के इसे सहन करने में सक्षम होना। विनम्रता, ये स्वीकार करना कि आप किसी और से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है और ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है कि आपको इंतजार न करना पड़े। और उदारता, दुनिया को देखकर मुस्कुराना तब भी जब ऐसा लगे ये आपके खिलाफ साजिश रच रही है। तो ये खास जानकारी आपको कैसे लगी बताइएगा जरूर। ऐसी खास अपडेट्स के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर टीबी की मुफ्त जांच, मुफ्त इलाज और पोषण सहायता उपलब्ध है। मन में हो टीबी से जुड़ा सवाल तो करें टोल फ्री नंबर पर कॉल 1800-11-66-66।

0: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है शिव मंगल सिंह सुमन की कविता हमें न बांधो प्राचीरों में।

0: हमें ना बांधो प्राचीरों में। अभी आप सुन रहे थे शिव मंगल सिंह सुमन की ये कविता। गायिका थी वंदना वाजपेयी, संगीतकार महेंद्र सरीन, ध्वनियांकन उपेंद्रनाथ और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग वंदना निगम तथा प्रस्तुतकर्ता रमेश रानी शर्मा।
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
2: नाम तो सुना ही होगा।
3: राम राम दोस्त राम, सत श्री अकाल। यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये आवाज आपने सुनी ही होगी। मेरा नाम है गगन। सुबह से लेकर शाम तक मैं रहता हूँ आपके साथ, लेकिन एक ऐसी शख्सियत से आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ जिसका नाम अक्सर आपने सुना है, जिसकी आवाज से आपका दिन बन जाता है या यूं कहें कि रातें बन जाती हैं। सो लिसनर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरजे साइमा, रेडियो मिर्ची की बड़ी फेमस आरजे, पुरानी जींस लेकर आती हैं और रेडियो शो में पुरानी हिंदी फिल्मों के गानों के साथ साथ दिलचस्प किस्से और शायरियां सुनाती हैं। जब इनसे मुलाकात हो तो मौके पर चौका मारना चाहिए और ऐसे मौके पर चौका मारा हमारी सहयोगी खुशबू ने। उनसे बात की एआई के विषय में। आइए, क्या बात हुई, सुनते हैं आरजे साइमा को खुशबू के साथ।
4: आज हमारे साथ खूबसूरत आवाज के साथ साथ एक ओपिनियन रखने वाली आरजे मौजूद है, आरजे साइमा, जिन्हें किसी पहचान की तो जरूरत नहीं है, लेकिन एआई के दौर में रेडियो किस तरह से बदल रहा है, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बदल रहा है रेडियो एआई के बाद, कह रहे खत्म हो जाएगा, जॉब चली जाएगी, बहुत सारी सवाल हैं, आप इसे कैसे देखती हैं?
5: मैं इसे देखती हूँ कि रेडियो बदल रहा है, हर दिन बदलता है, हर वक्त बदलता है, हर मोमेंट बदलता है, तो रेडियो भी बदलेगा और उसके बदलने में कोई बुराई नहीं है, गम बेहतरी की तरफ बढ़े। इसका जो एक प्रॉमिस है, उसका जो एक वादा है, वो उससे कॉम्प्रोमाइज ना करे और उसमें हर वो नई चीज लाए जिससे जो सुनने वाला है वो मुतासर हो, वो उससे कनेक्ट करे। एआई एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये हमारे रेडियो एक्सपीरियंस को बेहतर कैसे करेगा, और मुझे यकीन है कि ये बेहतर करने के लिए ही आया है।
4: मैम, दौर बदला है, वक्त बदला है, हम बदलने के लिए और अडॉप्शन की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से आपकी आवाज को अगर कोई बदल कर कुछ और पेश कर दे तो ये कितना खौफनाक है और इसे कैसे देखते हैं?
5: हाँ, ये बहुत खौफनाक है और ये एआई का एक फ्लिप साइड है जहाँ पे हमें एथिकल लॉज की जरूरत है, हमें रेगुलेशन की जरूरत है, हमें बहुत सारे कानून की जरूरत है ताकि इसी का दुरुपयोग ना किया जा सके। कोई भी टेक्नोलॉजी दोनों चीज लेकर आती है, वो आपके लिए फायदेमंद भी होती है, वो आपके लिए नुकसानदेह भी बन सकती है। मेरी आवाज को इस्तेमाल करके कोई अगर नफरत की कोई बात कहे तो मुझे खुशी सिर्फ एक बात की होगी कि जो लोग मेरे बारे में जानते हैं उनको पता है कि ऐसी बात मैं कभी कर नहीं सकती और मैं यहाँ हूँ उस बात को झुटलाने के लिए। लेकिन ये कानून आना बहुत जरूरी है कि कोई भी मुझसे बिना पूछे मेरी आवाज नहीं बन सकता और नहीं इस्तेमाल कर सकता।
4: आज के दौर को आप उस आवाज में क्या कहना चाहेंगी जहां पर एक स्टूडेंट आपको सुनता है, आपको एज ए इंस्पिरेशन देखता है और रेडियो को, क्योंकि डिजिटल दौर में रेडियो को इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ी लाइन ब्लर हो रही है, तो मैं चाहूंगी कि आप उन स्टूडेंट से कुछ कहें जिनसे वो ब्लर लाइन के बीच अच्छे से कनेक्ट कर सके।
5: एक इंसान को, यू नो, व्हाट डू वी लव, जिंदगी के बारे में सबसे अच्छी चीज क्या है कि जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है, हमें नहीं पता कि अगले पल क्या होगा एंड इससे हम इंटरेस्टेड रहते हैं, दिलचस्पी बनी रहती। जो रेडियो मीडियम है ना, वो हमें बहुत आजाद करता है, एक तो वो दुनिया बनाने में जो हम बनाना चाहते हैं, उस चीज को देखने में और किस तरह से हमें देखना है, ये हमारे हमारे अंदर ये हमारा राइट होता है। मैंने एक बात कही, अगर मैं सामने नहीं हूं तो आपने मेरे एक्सप्रेशंस तो नहीं देखे, लेकिन वो बात अब आप कैसे इमेजिन कर रहे हैं वो आपकी हो गई। तो रेडियो देने वाला मीडियम है, मैंने आपसे कोई बात अगर कही तो वो बात अब आपकी है, आप उसको कैसे सोचते हैं वो लिबर्टी आपके पास है जो कि और मीडिया के पास नहीं है, वहां पे जो दिखता है वही है, आप बदल नहीं सकते।
4: बिल्कुल मैम, एक आखिरी सवाल आपसे है, एज अ रिसर्चर, कम्युनिटी रेडियो के अपने चैलेंजेस हैं, एज अ आरजे कैसे देखते हैं आप, क्योंकि बड़े चेहरे बड़े नाम कहानियां बदल जाती है लेकिन कम्युनिटी, छोटा सा प्रदेश, उसकी चुनौतियां और उसकी सस्टेनेबिलिटी बदल जाती है, तो क्या कहेंगे इस पे?
5: मुझे लगता है कम्युनिटी रेडियो रेडियो का असल फॉर्म ले, बिकॉज रेडियो इंपैक्ट का मीडियम होना चाहिए, और कम्युनिटी रेडियो के पास वो आजादी है कि वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। और आज के दौर में हमें छोटे छोटे हिस्सों में अपनी आवाज को एक बेहतर अंजाम के लिए इस्तेमाल करना है। सो कम्युनिटी रेडियो आज जितना रेलेवेंट और आज जितना जरूरी है उतना कभी भी नहीं था।
3: भाई बिल्कुल सही कहा आरजे साइमा ने कि जिस तरीके से सामुदायिक रेडियो स्टेशन आज रेलेवेंट है इतना पहले कभी नहीं था। सामुदायिक रेडियो स्टेशन आपकी आवाज है, जन जन की आवाज है, और जन जन की आवाज को लाखों करोड़ों लोगों तक हम पहुंचा रहे होते हैं फ्रीक्वेंसी के माध्यम से, ऐप के माध्यम से। इसीलिए कहूंगा कि सुरू शारदा 90.8 एफएम के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। 01204060205 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मेल भी कर सकते हैं 90.8fm@sharda.ac.in पर। और अगर आपको लगता है कि एक मुलाकात जरूरी है तो शारदा विश्वविद्यालय के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं इन्हीं नंबर पर कि ये चर्चा आपको कैसी लगी। आरजे साइमा के साथ जुड़ी रही हमारी खुशबू। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुरो शारदा 90.8 FM।
2: Hi everyone, this is Dania Doshi and you're listening to Suno Sharda 90.8 FM.
6: Hi, मैं हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की में। आज हम बात करने वाले हैं कि विटामिन B12 की कमी से क्या क्या दिक्कतें परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं। बात करते हैं विटामिन B12 की कमी से शरीर और ब्रेन हो सकता है कमजोर। ये 5 फूड्स खाकर इस कमी को आप पूरा कर सकते हैं। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। जाहिर सी बात है कि इसके बारे में कुछ रोज पहले हमने बातें की थी, लेकिन अब हम इससे कुछ आगे बढ़ते हैं तो बात निकल कर ये सामने आती है कि विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए कुछ फूड्स बताए गए हैं, वो अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आपको आपकी सेहत में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से बात करते हैं। विटामिन B12 की कमी की समस्या काफी कॉमन है, हालांकि कई बार लोग इसे अधिक गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी हो जाने के बाद मसल्स में कमजोरी और जोड़ों में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं? विटामिन B12 DNA बनाने का काम करता है, जो ये नर्वस सिस्टम को काम करने में भी सहायता करता है। हमारा शरीर विटामिन B12 का उत्पादन खुद नहीं कर सकता, इसीलिए इसकी कमी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। हम जानेंगे ऐसी फूड्स के बारे में जिनके सेवन से पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 पाया जा सकता है। बात करते हैं विटामिन बी की कमी क्यों होती है, ये भी जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रिया पालन के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी होने की आशंका भी बढ़ जाती है। मसल्स में कमजोरी, हाथ पैर सुन्न हो जाना, एनीमिया और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा के लिए डॉक्टर पायल कुछ विशेष फूड्स के सेवन की सलाह देती है। चलिए जानते हैं, सालमन मछली की बात करते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में विटामिन B12 पाया जाता है, इसके लिए आप सालमन और टूना मछली का सेवन कर सकते हैं। बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों के विषय में। विटामिन B12 से भरपूर फूड्स में हरी पत्तेदार सब्जियां और कई फलों का नाम भी शामिल है। केला, पालक और चौलाई जैसी सब्जियों का सेवन करने से आपको विटामिन B12 प्राप्त हो सकता है। वहीं सीजनल फ्रूट्स का सेवन भी करने से विटामिन B12 मिल सकता है। लो फैट पनीर के विषय में जानते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, पनीर, चीज और दूध का सेवन करने से विटामिन B12 की अच्छी मात्रा प्राप्त हो सकती है। डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन उन लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण है जो नॉन वेज नहीं खाते। दूध उन शाकाहारी फूड्स में से एक है जो विटामिन B12 से समृद्ध होते हैं, साथ ही इससे प्रोटीन और कैल्शियम भी प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं मशरूम की। कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा विटामिन B12 की अच्छी मात्रा मशरूम्स में पाई जाती है। वहीं मशरूम में प्रोटीन और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी का आपने लाभ उठाया होगा। ऐसी खास जानकारी सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो साधन 90.8 FM। फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: अरे सुनीता, कैसी है मुनिया?
2: नमस्ते आशा दीदी, बस ठीक है।
1: साफ सफाई का ध्यान रख रही हो?
2: जी दीदी, जैसा आपने बोला था, हर रविवार साफ सफाई की जिम्मेदारी लेते हैं। जहाँ कहीं भी पानी इकट्ठा देखते हैं, तुरंत साफ करते हैं, जैसे पानी का ड्रम, कूलर, फ्रिज की ट्रे
3: और आसपास कहीं भी टायर, नारियल, खाली बर्तन या किसी भी चीज में पानी जमा होने नहीं देते। दीदी
1: बहुत

0: देखिए मानव ने क्या बनाया है।
1: अरे सृष्टि, अरे क्या हुआ सृष्टि, मानव ने ऐसा क्या खास बनाया है?
0: ये तो आपको देखकर ही पता चलेगा विवेक भैया।
1: अच्छा भाई, तब तो जरूर देखना पड़ेगा।
0: हाँ, आइए मेरे साथ। ये देखिए विवेक भैया।
1: अरे वाह, अरे वाह भाई, ये तो पवन चक्की का मॉडल है।
0: हाँ भैया, शायद मानव ने ये मॉडल स्कूल में विज्ञान दिवस के अवसर पर होने वाले विज्ञान मेले के लिए बनाया होगा।
1: अरे मानव यही आ रहा है। मानव, मानव इधर आ।
0: हाँ,
1: इसी से पूछ लेते हैं। मानव बताना जरा मॉडल के बारे में।
0: हाँ मानव, ये मॉडल स्कूल में होने वाले विज्ञान मेले के लिए है ना?
2: हाँ दीदी, ये मॉडल मैंने उसी दिन के लिए बनाया है। जरा बताओ तो, पवन चक्की का ये मॉडल कैसा बना है?
0: मानव, ये मॉडल मुझे मॉडल कम खिलौना ज्यादा लग रहा है।
1: हाँ मानव, बुरा मत मानना, लेकिन सच कहूँ ना तो तुमने इस मॉडल को बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं की, या फिर बनाते हुए ठीक से ध्यान नहीं दिया। अब देखो, इसके पंखे छोटे बड़े हैं, है कि नहीं?
0: हाँ।
1: इन सभी का आकार समान होना चाहिए था।
2: विवेक भैया, वो तो जल्दी जल्दी बनाने में ना मेरे को ध्यान ही नहीं रहा।
1: अरे मानव, किस बात की जल्दी थी तुम्हें?
0: अरे भैया, मानव की तो हर काम में जल्दी करने की आदत बन गई है।
1: अरे मानव, कितनी बार समझाया तुम्हें कि जल्दी का काम अच्छा नहीं होता।
0: भैया कहते हैं ना मानव, जल्दी का काम शैतान का होता है।
3: क्या हुआ बच्चों, कौन शैतान का काम कर रहा है?
0: कोई नहीं मम्मा, वो तो विवेक भैया मानव को समझा रहे थे।
3: हाँ?
0: कि जल्दी में कोई काम अच्छे से नहीं होता।
1: हाँ?
2: देखो ना मम्मी, मैंने पवन चक्की का मॉडल बनाया है। अब इसमें कुछ छोटी मोटी गलती तो हो सकती है ना?
1: छोटी मोटी?
3: भाई छोटी मोटी गलती तो ठीक है मानव, पर एक बात का ध्यान रखना कि जल्दी जल्दी किया गया कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं होता।
2: अरे मम्मी, पापा आजकल कहते तो रहते हैं कि इतनी जल्दी साल खत्म हो जाता है कि पता ही नहीं लगता। अब जब प्रकृति ही इतनी जल्दबाजी कर रही है तो मैं क्यों धीरे धीरे चलूं?
0: अरे मानव, अपनी गलती छिपाने के लिए प्रकृति को क्यों दोष दे रहा है?
1: हाँ? हाँ?
3: वैसे भी प्रकृति में तो सभी कार्य एक निश्चित समय पर ही होते हैं। और प्रकृति कौन सा काम जल्दी जल्दी करती है?
1: और मानव जानता है, ये जिस धरती पर तू इतना उछल कूद करता रहता है ना, उसको भी आज की अवस्था में पहुँचने में लाखों करोड़ों वर्ष लगे
2: हैं। लाखों करोड़ों वर्ष लगे हैं?
3: हाँ मानव, यही सच है कि लाख

0: लाखों करोड़ों वर्ष के दौरान धीरे धीरे होने वाले परिवर्तनों के कारण ही आज धरती वर्तमान की अवस्था तक पहुंची है।
1: तो आपके कहने का मतलब है कि हमारी पृथ्वी अपनी आरंभिक अवस्था में अलग थी और आज उसकी स्थिति अलग है।
0: हाँ मानव, हमारी धरती तो लाखों करोड़ों वर्षों से धीरे धीरे सजती संवरती हुई आज जैसी बनी है।
2: और जानता है मानव, इस दौरान इस धरती में कई परिवर्तन हुए हैं, तब जाकर यहाँ जीवन को बनाए रखने वाला वातावरण विकसित हो पाया है।
3: मतलब ये भैया कि हमें हमारे आसपास दिखाई देने वाला जीवन पृथ्वी में लाखों करोड़ों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों का नतीजा है।
0: बिल्कुल ठीक कहा सृष्टि तुमने। पृथ्वी पर जीवन इसलिए पनपा क्योंकि ग्रह पर जीवन के लिए आवश्यक कारक मौजूद थे और ये सब धीरे धीरे होने वाले चरणबद्ध परिवर्तनों का ही परिणाम है।
1: भैया तब तो आपको मुझे धरती के विकास की कहानी सुनानी ही पड़ेगी।
2: अच्छा भाई,
4: गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग
5: पापा।
4: कौन कहानी सुना रहा है, जरा हमें भी तो अपनी मंडली में शामिल कर लो।
3: कहानी नहीं पापा, हम तो आज पृथ्वी के विकास की बात कर रहे थे।
4: वेरी गुड भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। पर आज अचानक तुम्हें पृथ्वी के विकास के बारे में जानने की सूझी, क्या कोई विशेष बात है?
3: कुछ विशेष तो नहीं पापा, दरअसल मानव ने पवन चक्की का एक मॉडल बनाया है।
4: वेरी गुड।
3: और पापा आपको तो मानव की जल्दबाजी की आदत पता ही है ना?
2: कुछ नहीं हुआ पापा, बस जल्दबाज मानव पवन चक्की का एक अच्छा मॉडल नहीं बना पाया।
1: पापा आप सृष्टि दीदी और विवेक भैया की बातों में ध्यान मत दो, ये तो कभी मेरे काम की तारीफ करते ही नहीं है।
0: ऐसी बात नहीं है बेटा, ये बात तो तुम भी मानते हो ना कि इन दोनों के सुझावों से तुम्हारे कई काम भी तो अच्छे होते हैं।
1: वो तो है मम्मी, पर आज भैया की ये बात कि हमारी पृथ्वी लाखों करोड़ों वर्षों के बाद आज की अवस्था में पहुंची है, मुझे जरा जमी नहीं। इसीलिए मैं पृथ्वी के विकास के बारे में थोड़ा विस्तार से जानना चाहता हूँ।
4: अच्छा तो ये बात है मानव, वैसे ये अच्छी बात है, इसी बहाने हम भी अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर लेंगे।
2: हाँ बाबा, और ये भी बता देंगे कि हम कितने इंटेलिजेंट हैं।
4: आखिर तो तुम मेरे ही बेटे हो।
2: बोलना जरूर है। हाँ तो मानव, ये तो तुम्हें पता ही है ना कि हमारी धरती का जन्म सौर मंडल के जन्म के समय हुआ था, ठीक?
1: हाँ भैया, ये तो मैं जानता हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि पृथ्वी का जन्म करीब 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ था।
4: और बच्चों आरंभिक समय में तो हमारी पृथ्वी बहुत गर्म और पिघली अवस्था में थी।
3: मैंने तो ये भी पढ़ा है कि शुरुआत में पृथ्वी पर क्षुद्र ग्रहों, चट्टानों और अन्य पदार्थों की बरसात होती रही थी।
2: बिल्कुल ठीक पढ़ा है शशि तुमने। तब इन बरसने वाले पदार्थों के कारण पृथ्वी में बहुत उथल पुथल होती रहती थी।
4: एक मिनट भाई वसुधा। हाँ। अब तो भूख के मारे हमारे पेट में भी उथल पुथल हो रही है।
1: हाँ मम्मी, और नाश्ते का समय भी तो हो गया है।
3: मानव घड़ी देखकर खाते पीते हो क्या?
0: नहीं बेटी, वो तो नाश्ता लगाने की याद दिला रहा है, वैसे भी उसके खाने का कोई टाइम है क्या? चलो मैं अभी कुछ नाश्ता लेकर आ रही हूँ।
1: वैसे आज नाश्ते में क्या बना होगा?
2: अरे अब आ तो रहा है, खा कर ही देख लेना।
4: अब लो, हाँ तुम्हारी मम्मी नाश्ता ले भी आई।
6: ये लो।
4: खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है भाई।
6: क्या बना है आज?
1: भाई वाह, चावल और परदार पराठे।
2: मम्मी क्या खुशबू है, मजा आ गया। और पापा, पराठे देखकर मुझे पृथ्वी के विकास की एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान आई।
3: कौन सी बात भैया?
2: तुम्हें तो पता ही है कि हमारी पृथ्वी भी अलग अलग परतों में बटी हुई है, जानती हो ना?
3: हाँ भैया, मैंने पढ़ा तो था कि पृथ्वी में मुख्यतः 4 परतें हैं। हाँ
1: 4 परतें? अरे मम्मी भी तो परतों वाले पराठे बनाती है।
4: हाँ, जो है ना,
2: जो कि बहुत बहुत ही टेस्टी होते हैं। मानव देखा जाए तो ये धरती भी हम सब की माँ है जिसने हमें पाला पोसा है।
4: और रही धरती की परतों की बात, तो हाँ हमारी शुरुआती गर्म धधकती धरती जब ठंडी होनी शुरू हुई तो उसमें धीरे धीरे 4 परतें बनी।
1: मतलब पृथ्वी की परतें उसके जन्म के बाद बनी।
2: हाँ मानव, पृथ्वी के जन्म के बाद पृथ्वी में उपस्थित भारी पदार्थ इसके केंद्र की ओर और हल्के पदार्थ सतह की ओर आ गए।
4: और बच्चों, इस प्रकार पृथ्वी के जन्म के करीब 10 करोड़ वर्ष बाद पृथ्वी की सबसे बाहरी परत भूपटल का निर्माण हुआ।
1: भूपटल के अलावा अन्य 3 परतें भी तो हैं।
0: इन परतों के नाम तो मुझे भी पता है।
4: हा?
0: दूसरी परत को प्रावार यानी मेंटल कहते हैं और तीसरी और चौथी परतें बाहरी कोर और अंदरूनी कोर कहलाती हैं।
1: अरे वाह मम्मी।
4: ओह थैंक यू थैंक यू।
2: पापा मैं मम्मी को वेरी इंटेलिजेंट।
4: अब कोई बात नहीं कोई बात नहीं।
2: तो भाई इस प्रकार पृथ्वी की 4 परतें हुई, भूपटल, मेंटल और बाहरी और अंदरूनी कोर।
4: चलो ये तो अच्छा ही हुआ कि पराठे के बहाने मानव पृथ्वी की परतों के बारे में भी जान गया।
1: पापा ये तो आम की आम और गुठलियों के दाम वाली बात हुई।
4: एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है।
1: लेकिन आज तो मैं पूरे दाम वसूल करूंगा।
0: दाम क्या मतलब है मानव?
1: अरे मम्मी मतलब यही कि मुझे पृथ्वी के विकास के बारे में कुछ और भी जानना है।
4: हाँ मानव, वैसे भी आज तो मैं भी घर पर ही हूँ।
1: अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन पापा क्या धरती आरंभ से ही इतनी सुंदर थी?
3: मानव पृथ्वी तुझ जैसी जल्दबाज नहीं है।
1: अच्छा,
3: वो तो धीरे धीरे विकास के दौर से गुजरती हुई आज अपने इस स्वरूप में पहुंची है।
4: और बच्चों, जीवन के लिए आवश्यक माने गए हवा और पानी जैसे तत्व भी एक समय बाद ही धरती पर आए।
2: बिल्कुल सही पापा, क्या बात है।
4: थैंक यू थैंक यू।
2: और धरती के आरंभ में तो यहाँ वायुमंडल तक नहीं था।
1: अच्छा, तब तो उस समय हमारी पृथ्वी पर कहीं भी जीवन नहीं रहा होगा ना?
4: अब बेटा, जीवन तो तब होगा ना जब जीवन के लिए अनुकूल माहौल उपलब्ध हो।
1: क्या मतलब पापा?
2: मतलब साफ है मानव, पृथ्वी के जन्म के समय ना तो यहाँ ऑक्सीजन थी और ना ही पानी था।
3: मम्मी किचन से कोई आपको बुला रहा है, जाइए।
0: मैं तो तुम्हारी बातों में भूल ही गई थी कि मैंने गैस पर दाल पकने को रखी है। अब अच्छा बच्चों, मैं किचन में चली, तुम अपनी बातें जारी रखो।
4: चलो इसी बहाने हमें भी एक बात याद आ गई।
2: वो क्या पापा?
4: अब मानव, हमारी पृथ्वी भी आरंभिक समय में प्रेशर कुकर की भांति गर्म थी।
1: अच्छा?
4: हाँ, जिसमें से आरंभिक काल में गर्म और कुछ विषैली गैसें लगातार धरती के अंदर से बाहर निकल रही थी।
2: हाँ मानव, धरती के विकास के आरंभिक वर्षों में ज्वालामुखियों और अन्य प्राकृतिक क्रियाओं से धरती की अंदरूनी गर्मी बाहर आती रहती थी।
4: बिल्कुल।
1: तो क्या उस समय भी ज्वालामुखी थे?
3: मानव ज्वालामुखी तो पृथ्वी के जन्म के समय से ही अस्तित्व में है।
4: और बच्चों, इस प्रकार पृथ्वी के जन्म के कुछ वर्षों तक यहाँ जहरीली गैसों और ज्वालामुखियों की ही भरमार थी।
2: और आरंभिक समय में ज्वालामुखियों के अतिरिक्त क्षुद्र ग्रहों, चट्टानों और अन्य पदार्थों की बरसात के चलते धरती से गैसीय पदार्थ लगातार बाहर आते रहे।
4: वेरी गुड
1: पापा। उन गैसीय पदार्थों में ऑक्सीजन भी तो रही होगी ना?
4: नहीं नहीं नहीं मानव, उस समय आरंभिक समय में पृथ्वी पर कहीं भी ऑक्सीजन मुक्त अवस्था में नहीं थी।
1: अच्छा।
2: और आरंभिक समय में अत्यधिक गर्मी और सौर पवनों के कारण धरती का वायुमंडल भी स्थिर अवस्था में नहीं था। उस समय अधिकतर गैसें अंतरिक्ष में चली जाती थी।
1: तो फिर धरती पर वायुमंडल कैसे बना?
3: मानव तुझे बहुत जल्दी रहती है, पूरी बात सुने बगैर ही बीच में काट देता है।
1: अच्छा बाबा, अब मैं पूरी बात सुनकर ही बोलूं।
2: हाँ मानव, पूरी बात सुनकर ही बोल। धरती के ठंडा होने पर ही यहाँ वायुमंडल स्थिर हो पाया।
4: और बच्चों, इस क्रिया में बारिश की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी।
2: हाँ, पृथ्वी के ठंडा होने पर यहाँ उपस्थित गैसीय पदार्थों के संघनन से बादल बने और फिर ये बादल ठंडे होकर खूब बरसे।
4: और आरंभ में तो धरती की गर्मी के कारण कहीं कहीं बारिश का पानी शीघ्र ही वाष्प बनकर उड़ गया।
3: लेकिन मेरी टीचर ने बताया था कि धरती पर पहली बारिश कई वर्षों तक रही।
4: सही सही बोला है उसने।
1: फिर तो कई जगह बाढ़ आने से जान माल का बहुत नुकसान हुआ होगा, है ना? अरे बुद्धू, उस समय धरती पर ना तो कोई जीवन था और ना ही कोई संपत्ति।
4: हाँ बिल्कुल। अरे मानव, पृथ्वी पर तो जीवन बहुत बाद में आया। अरे अभी तो पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक वातावरण तैयार हो रहा था और ये सारी प्रक्रियाएं धीरे धीरे चल रही थी।
1: पापा चलो ये तो मान लिया कि धरती पर हुई पहली मूसलाधार बारिश से बाढ़ नहीं आई होगी, लेकिन उस बारिश से सारी नदियाँ और महासागर तो लबालब भर गए होंगे।
2: मानव, आज जिन महासागरों का अस्तित्व है उनका तो उस समय नामो निशान तक नहीं था।
1: तो क्या पृथ्वी के जन्म के समय यहाँ महासागर नहीं थे?
3: अरे मानव, जब तुझे पहले बताया कि पृथ्वी के आरंभिक काल में ये बहुत गर्म थी और यहाँ पानी भी नहीं था, तब उस समय महासागर की तो बात ही नहीं उठती।
2: पापा आप कह ही दो, इतनी अच्छी बात करी दी सृष्टि ने तो।
4: जैसा पिता वैसी पुत्री।
1: पापा।
4: लेकिन मानव, कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार धरती पर वर्षों तक होने वाली पहली मूसलाधार बारिश से, जानते हो, धरती की सतह पर 6 मीटर ऊपर तक पानी भर गया था।
1: 6 मीटर?
4: हाँ।
1: एक तो वो दिन थे जब चारों ओर पानी ही पानी था, और एक ये दिन है जहाँ जाओ वहीं पानी की समस्या।
3: लेकिन तब पानी का अंधाधुंध दोहन करने वाला मानव कहाँ था?
1: क्या दीदी, आप तो हमेशा मेरी टांग खींचती रहती
2: है। मानव, नहीं नहीं सृष्टि तेरी नहीं, बल्कि वो तो इंसानों की बात कर रही है।
4: और रही मानव टांग खींचने वाली बात, तो ये तो तू भी जानता है कि सृष्टि तुझे दिल से बहुत प्यार करती है। बेटा
2: सृष्टि करती है ना?
1: हाँ, बोलो बोलो।
2: ये तो पापा बिल्कुल सच कह रहे हैं।
4: मैं झूठ कब कहता?
2: मैंने कई बार देखा है पापा कि सृष्टि कितनी बार अपने हिस्से की मिठाई या चॉकलेट भी मानव को खाने को दे देती है।
1: ये तो है भैया, माँ प्रेम का सागर है तो मेरी सृष्टि दीदी भी नदी से कम नहीं है।
3: थैंक यू। भैया हमारी गाड़ी भी तो महासागरों पर आकर अटक गई है।
4: तो बच्चों, ये तो तुम लोगों को पता लग ही गया कि धरती के जन्म के समय यहाँ न महासागर थे और न ही महाद्वीप।
2: महासागरों और महाद्वीपों का निर्माण तो पृथ्वी के विकास के दौरान हुआ।
1: तो क्या महासागर और महाद्वीप साथ साथ बने?
3: भैया मैंने पढ़ा था कि महासागरों और महाद्वीपों का निर्माण पृथ्वी की प्लेटों की गति से हुआ है।
1: हैं? पृथ्वी की प्लेटें? ये क्या चीज है?
4: अरे मानव, ये वो चाय वाली प्लेटें नहीं है। मानव, पृथ्वी की बाहरी परत यानी भूपटल विभिन्न विशाल चट्टानों से मिलकर बनी है और धरती की इन विशाल चट्टानों को प्लेटें कहते हैं।
2: और सबसे पहले महान जर्मन वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में इन प्लेटों के बारे में प्लेट विवर्तनिकी नामक सिद्धांत में विस्तार से बताया।
4: वेरी गुड विवेक, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू।
2: मेरे लिए भी कही दो आप।
4: लाइक फादर लाइक सन। अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार धरती की सबसे बाहरी सतह करीब 1 दर्जन छोटी बड़ी प्लेटों से बनी हुई है।
1: लेकिन पापा, इन प्लेटों का निर्माण कैसे हुआ?
2: मानव, इन प्लेटों का निर्माण पृथ्वी की हलचल के कारण धीरे धीरे होता रहा।
3: मतलब पृथ्वी की इन प्लेटों का निर्माण भी पृथ्वी की विकास प्रक्रिया का ही एक अंग था।
4: एग्जैक्टली। और ये प्लेटें अपने निर्माण के समय से ही गतिमान अवस्था में है।
1: अच्छा, तो इन प्लेटों की गति से ही आगे चलकर महासागर और महाद्वीपों का निर्माण हुआ होगा।
4: वेरी गुड, बिल्कुल अच्छा।
2: महासागर और महाद्वीपों के बनने की प्रक्रिया को विवर्तनिकी सिद्धांत द्वारा समझाया जाता है।
4: और हाँ बच्चों, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत द्वारा न केवल महासागर और महाद्वीपों की बल्कि पर्वतों और खाइयों के निर्माण प्रक्रिया भी समझाई जा सकती है।
1: वो कैसे पापा?
4: वो ऐसे कि प्लेटों की आपसी टकराहट और इनमें संकुचन के कारण ही पर्वतों और खाड़ियों का निर्माण होता है।
2: जैसे करीब 5 करोड़ वर्ष पहले भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मध्य हुई टकराहट और इसके परिणाम स्वरूप विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत, कौन से पर्वत?
1: आप बताओ ना।
2: तुम बताओ ना।
1: भैया बताओ ना।
2: यानी हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ।
1: पापा, क्या महाद्वीप भी इसी प्रकार बने थे?
4: हाँ बेटा, लेकिन महाद्वीपों के निर्माण में उनमें लगातार होने वाले फैलाव की भूमिका भी महत्वपूर्ण है।
2: महासागर और महाद्वीपों के फैलाव को महाद्वीपीय विसरण के सिद्धांत द्वारा समझाया जाता है।
4: बिल्कुल ठीक। और बच्चों, महाद्वीपीय विसरण का सिद्धांत पृथ्वी के विकास के दौरान धीरे धीरे बनने वाले महासागर और महाद्वीपों के बारे में ही है।
2: इस सिद्धांत के अनुसार, पापा बता देना अगर गलत हो तो,
4: हाँ,
2: इस सिद्धांत के अनुसार आरंभ में धरती पर पांजिया नामक एक ही अति विशाल महाद्वीप था।
4: बिल्कुल सही हो, बिल्कुल सही हो।
2: थैंक यू पापा।
1: पांजिया महाद्वीप के बनने तक तो कोई महासागर भी अस्तित्व में आ चुका होगा ना?
4: हाँ मानव, उस काल में पेंथेलासा नामक अति विशाल महासागर था।
1: तो पापा, आज ये महासागर और महाद्वीप कहाँ गए?
2: मानव, ये महासागर और महाद्वीप गए तो कहीं नहीं, बस समय के साथ साथ इनका रूप बदलता रहा।
4: जैसे करीब 20 करोड़ वर्ष पूर्व पांजिया महाद्वीप दो हिस्सों में टूटकर एक दूसरे से दूर जाने लगा था,
2: और पांजिया महाद्वीप के गोंडवाना लैंड और लॉरेशिस कहलाने वाले ये दो हिस्से टेथिस महासागर द्वारा एक दूसरे से अलग हो गए।
4: बिल्कुल
1: भैया, क्या वर्तमान में भी इन हिस्सों को पहचाना जा सकता
2: हाँ,
1: है?
2: हाँ भाई, क्यों नहीं। तब का गोंडवाना लैंड आज के अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया का ही पुराना रूप है।
1: ओ, तो क्या तब से लेके अब तक ये महाद्वीप लगातार गति कर रहे हैं?
4: मानव, गति तो कर रहे हैं, लेकिन महाद्वीपों की गति दर हमारे नाखूनों के बढ़ने जितनी है।
1: मतलब
4: कि करीब 1 इंच प्रति वर्ष।
3: तभी तो धरती लाखों करोड़ों वर्षों के बाद अपने इस रूप में पहुंची है।
4: बिल्कुल सही।
2: इस प्रकार धरती की भूपटल परत की प्लेटों के फैलाव से आज के महासागरों और महाद्वीपों की रचना हुई। समझ गई ना?
1: लेकिन भैया, आपने ये नहीं बताया कि धरती पर पहला जीव कब जन्मा था?
2: मानव, धरती पर पहला जीव करीब, पापा कुछ याद है?
4: अब 3.5 अरब वर्ष पहले।
2: हाँ, 3.5 अरब वर्ष पहले पानी में जन्मा था।
1: पानी में?
4: हाँ बेटी, उस समय धरती पर ओजोन परत का निर्माण तो हुआ नहीं था, और शायद इसीलिए आरंभिक जीव अपने को सूर्य की घातक पराबैंगनी किरणों, तुम समझोगे नहीं शायद, तुमको अंग्रेजी में बताता हूँ, अल्ट्रावायलेट रेस से बचाता हुआ जल के अंदर विकसित हुआ।
1: अच्छा, लेकिन पापा, आरंभिक जीवन पानी में ही क्यों पनपा?
2: सोचो सोचो सोचो भाई मानव,
1: तुम ही सोचो। बता दीजिए ना भैया।
2: देखो ना, इतने इंटेलिजेंट है।
4: ठीक है, तुम बताओ। चलो,
2: अच्छा चलो मैं बताता हूँ। क्योंकि पराबैंगनी किरणें यानी यूवी रेज गहरे पानी में अधिक प्रभावी नहीं होती, इसीलिए आरंभिक जीव पानी में ही उत्पन्न हुआ।
1: ओ अच्छा, पानी की ये विशिष्टता सुनकर मुझे तो बहुत प्यास लगी है, मैं अभी पानी पीकर आता हूँ। ठीक है
4: मानव, जरा मेरे लिए भी ठंडा पानी लेते आना।
2: और मेरे लिए भी। पापा, ठंडे पानी से याद आया कि हमारी धरती की विकास यात्रा के दौरान अनेक बार लाखों करोड़ों वर्ष तक यहाँ हिमयुग रहा।
4: बिल्कुल बिल्कुल सही बात तुमने बोली।
1: ये ना पानी।
4: ला भाई, तू पानी पिला, काम भी कभी कभी करता है।
1: हिमयुग?
2: हाँ हिमयुग।
1: तब तो कितना अच्छा मौसम होता होगा ना, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, चाहे जितनी मर्जी खूब खाओ और कोई पैसा देने की कोई चिंता ही नहीं होती।
3: लेकिन मानव, पैसे की बात तो छोड़ो, तब तो धरती पर हमारा ही अस्तित्व नहीं था।
4: और होता भी तो हिमयुग के दौरान जैसे हजारों प्रजातियां विलुप्त हुईं, उसी प्रकार इंसान भी इतनी अधिक ठंड का सामना नहीं कर पाने के कारण समाप्त हो गए होते।
2: हाँ मानव, इस प्रकार धरती से एक साथ हजारों प्रजातियों के समाप्त होने की घटना व्यापक विनाश या मास एक्सटिंक्शन कहलाती है, समझे?
1: तो क्या धरती पर व्यापक विनाश की घटनाएं भी होती रही हैं?
3: तो क्या समझता है मानव, धरती इतनी आसानी से सुंदर और जीवन को आश्रय देने वाली बनी है?
2: हाँ मानव, धरती तो लाखों करोड़ों वर्ष की विकास यात्रा के बाद आज इस रूप में दिखाई दे रही है।
3: धरती पर उल्कापात, क्षुद्र ग्रहों की बमबारी जैसी आकाशीय घटनाओं और हिमयुग के दौरान होने वाली व्यापक विनाश की घटना से यहाँ व्यापक परिवर्तन होते रहे हैं।
2: और इस तरह अनेक परिवर्तनों को सहते हुए हमारी धरती आज जीवन को आश्रय दिए हुए है।
4: अरे बच्चों, हमने तो बातों ही बातों में पृथ्वी के जन्म से लेकर उसके वर्तमान स्वरूप तक के सफर के बारे में जान लिया।
2: पापा आपने कितना सब कुछ बताया।
4: मैंने नहीं, तुमने भी बताया।
1: नहीं बताया।
4: लेकिन क्या बात है कि अभी तक तुम्हारी मम्मी का खाना नहीं बना।
0: अरे कौन कह रहा है खाना नहीं बना, बस अब तो खाने वालों का इंतजार है।
4: अरे भाई, हम भी तो तैयार ही बैठे हैं।
1: आहा, खाने की खुशबू से तो मुंह में पानी आ जाता है सच्ची। अरे मानव, क्या हुआ?
5: कुछ नहीं मम्मी, वो गर्मा गर्म दाल दाल से ना मुंह जल गया मेरा।
1: मम्मी, मानव की जल्दी की आदत हमेशा इसी का नुकसान करती है।
4: अरे मानव, खाने में भी जल्दी। अभी तक तूने धरती के धीरे धीरे विकास के बारे में जानकर भी कुछ सीख नहीं लिया।
5: अच्छा पापा, अब से तो मैंने कान पकड़ लिए कि अब कभी भी जल्दी नहीं करूंगा।
4: भाई, जिस तरह हमारी पृथ्वी धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ी और फिर लंबे समय के बाद यहाँ जीवन पनपा, उसी तरह अगर मानव भी जल्दबाजी की आदत छोड़ समझदारी से काम करता रहेगा तो धरती और मानव सदा मुस्कुराते रहेंगे।
7: आलेख एवं अनुसंधान नवनीत कुमार गुप्ता का था। निर्देशक थे सुदर्शन कुमार। प्रस्तुतकर्ता राजीव दुबे और प्रस्तुति सहायक संदीप चिकारा। भाग लेने वाले कलाकार थे योगेंद्र टिक्कू, लालिमा अनेजा, रिदिमा बग्गा, समीर ठुकराल और मेघा शर्मा।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: लेकिन दोस्त, अगर ऐसे ही जिंदगी का साथ निभाते चले तो जिंदगी तुम्हारा साथ निभाना छोड़ देगी और अस्पतालों के चक्कर लगेंगे सो अलग।
1: जी हाँ, आप भी सचेत रहें और रहें धूम्रपान से दूर, क्योंकि हम सबका है यही सपना, नशा मुक्त हो भारत अपना। सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: पूजा नहीं करती। कृपया आप रास्ता देंगे?
1: प्लीज।
0: थैंक यू।
2: वर्षा जी, कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो।
0: तुम्हें कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अब पता चलेगा बच्चू कौन हूँ मैं।
2: अलिका शरारती है।
3: वो तो ऐसे मजाक करती है, बहुत प्यार करती है मुझसे।

0: महामारी के दौरान स्वच्छता का महत्व और बढ़ जाता है। महामारी के दौरान स्वच्छता के लिए आप विविध साधनों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि पैड, टेम्पू, महामारी कप या साफ कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: यदि आप पैड का उपयोग करते हैं तो उसको जितना हो सके उतनी बार बदलें। दिन में कम से कम 2 से 3 बार पैड को बदलना चाहिए।
0: महामारी में सबसे अच्छा संभावित विकल्प महामारी कप है, जिससे पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता है।
1: महामारी कप सैनिटरी पैड और टैम्पोन के मुकाबले 5 गुना ज्यादा खून की मात्रा को एकत्र कर सकते हैं।
0: महामारी कप बैक्टीरिया के संक्रमण के जोखिम को कम करता है।
1: इसका दोबारा प्रयोग भी किया जा सकता है, इसमें खर्च भी कम होता है।
0: महामारी के दौरान साफ कपड़े का भी प्रयोग किया जा सकता है। एक साफ कपड़े को मोड़कर पैंटी में रखें। प्रयोग के बाद उसे साबुन और पानी से अच्छे से साफ करके धूप में सुखाएं।
1: प्रयोग किए गए कपड़े को छूने से पहले हाथों पर दस्तानों या प्लास्टिक की थैली को हाथ में पहन लें।
0: गंदे कपड़े का 1 हिस्सा क्लोरीन और 9 हिस्सा पानी के घोल में कम से कम 20 मिनट तक भिगो कर रखें। अगर क्लोरीन नहीं है तो कम से कम साबुन के पानी में 20 मिनट के लिए भिगो कर रख दें। पानी में साबुन की सही मात्रा को सुनिश्चित करने के लिए देख लें कि पानी को घोलने और हिलाने पर उसमें बुलबुले हों।
1: हाथों पर दस्तानों या प्लास्टिक की थैली को हाथ में पहनकर गंदे कपड़े को सामान्य तरीके से साबुन और पानी से साफ करें।
0: साफ किए गए कपड़े को धूप में सुखाएं। बचे हुए साबुन के पानी को फेंकने के लिए गड्ढा खोदकर उसमें डाल दें।
1: अपने हाथों से दस्ताने या पॉलिथीन को निकाल दें और हाथों को पानी और साबुन से अच्छे से धो लें।
0: महामारी संबंधी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
1: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: अच्छा सोचिए, जरा सी चोट लगे तो आप क्या करेंगे?
2: दवाई की दराज में से पट्टी निकाल के लगा लूंगी।
1: अच्छा, हल्का सा बुखार हो तो?
2: दवाई की दराज में से गोली निकाल के खा लूंगी।
1: और बच्चे को दस्त लगे तो? क्या हुआ, दवाई की दराज में जगह खत्म हो गई क्या?
3: दस्त के इलाज में देर हुई तो बच्चों के शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है, इसलिए दवाई की दराज में ORS और जिंक भी रखिए और दस्त शुरू होते ही इलाज शुरू कीजिए। दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
5: The world is here.

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग यानी कि आपात

केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोले। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में

0: और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: दूध उबालोगे, दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक,
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: अरे भैया रामू।
2: हाँ भैया श्यामू।
1: बड़े ढीले ढीले लग रहे हो, क्या हाल?
2: अरे भैया श्यामू, हाल बेहाल है और ये पथरी का दर्द है, निकलवानी है और जेब भी खाली है।
1: बस इतनी सी बात? चल ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल मेरे साथ, जहाँ छोटी मोटी सर्जरी सिर्फ 2,500 और बड़ी सर्जरी सिर्फ 6,000 रुपए में हो रही है।
2: अच्छा तो भैया लेके चल, अभी चल।
3: तो अभी चलो।
4: अगर आप भी हैं ग्रामीण और गरीब तबके से, तो ग्रेटर नोएडा का शारदा अस्पताल दे रहा है अच्छे इलाज का वादा। छोटे ऑपरेशन के 2,500 और बड़े ऑपरेशन के मात्र 6,000 रुपए। मरीज को बस देना होगा इम्प्लांट और सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले सामान का खर्च। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।
5: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने बच्चों की निगरानी कर सकते हैं, किस तरीके से बच्चों को हम संस्कार दे सकते हैं और किस तरीके से वो अगर गलत दिशा में जा रहे हैं तो हम उनको कैसे रोक सकें। जी हाँ, कुछ ऐसी बातें कहीं ना कहीं सुनने को समझने को मिल जाती है, लेकिन कुछ चुनिंदा बातों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा आगे चलकर आपका नाम रोशन करेगा, देश का भविष्य वो तय करेगा। जी हाँ, बात करते हैं आपका बेटा या बेटी को अगर कुछ ऐसे सबक सिखाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा एक संस्कारी बेटा या बेटी बनकर आगे बढ़ता रहेगा। जरूरी है कि उनकी गलतियों पर हमें पर्दा नहीं डालना है, जरूरी है कि उनकी गलतियों को सुधार में लाकर आगे बढ़ते हुए चले जाना है। बात करते हैं कुछ ऐसे ही विषय के विषय में। बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे इसका पता किसी को नहीं, लेकिन वो अच्छे इंसान बनेंगे या नहीं ये आप पर निर्भर करता है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होंगे। बच्चे भी वही आम की ही तरह होते हैं जिसको आपको बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी आदतें नहीं सिखाएंगे तो आपके लिए बच्चों के बेहतर भविष्य को तय करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि शुरू से ही बच्चों को अच्छी आदतें सिखाई जाएं। हालांकि मौजूदा वक्त में हम बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज कर उन पर हंसते हैं जो उन्हें आगे चलकर बिगाड़ने का काम करती हैं। आइए आपको बताते हैं कि बच्चों को सिखाई जाने वाली 5 ऐसी अच्छी आदतों के बारे में जो उन्हें अच्छा इंसान बनने में मदद करेंगी। बात करते हैं सबसे पहले ईमानदारी के विषय में। ईमानदारी एक ऐसा विषय है कि अगर आपके पास ये है तो निश्चित तौर पर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता और इसकी जो खुशबू है वो चारों दिशाओं में फैलती है। जी हाँ, बच्चों को शुरू से ही ईमानदारी के रास्ते पर चलना सिखाना होगा और इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला तो ये कि बच्चा सच बोलने में कभी आपसे कतराएगा नहीं और दूसरा उसे अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ईमानदारी बच्चों में मासूमियत बरकरार रखने का काम करती है। आप बच्चों को झूठ बोलने के परिणामों के बारे में बताएं और उन्हें गलती स्वीकार करना सिखाएं। अच्छा स्वभाव यानी कि गुड मैनर्स टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को जल्द से जल्द अच्छा स्वभाव अपनाना सिखाना चाहिए। अच्छा स्वभाव आपके बच्चे का सोशल IQ तो बढ़ाता ही है, साथ ही उसे बेहतर तरीके से निखार कर सामने आने में भी मदद करता है। अच्छा स्वभाव उसे उसके जीवन में अच्छा इंसान बनने में भी मदद करता है। बात करते हैं हेल्दी फूड्स के विषय में। हेल्दी फूड्स का चुनाव करना ये भी एक बड़ा सब्जेक्ट है, यानी हेल्दी फूड सिलेक्शन टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को हमेशा हेल्दी फूड्स का विकल्प चुनना सिखाना चाहिए। जब बच्चों को हेल्दी फूड्स के बारे में पता होगा तो अपने जीवन में हेल्दी रहना वो सीख पाएंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल भी फॉलो करेंगे। हेल्दी फूड्स बच्चों के स्वास्थ्य को हेल्दी रखने की एक गारंटी है जिसे हर माता पिता को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। बात करते हैं सम्मान की। सम्मान हर कोई चाहता है, लेकिन अगर आप किसी को सम्मान देते हैं तो निश्चित तौर पर ये आपके सम्मान की बात है, यानी कि रेस्पेक्ट टू टीच टू किड्स। छोटे बड़ों का सम्मान करना हर किसी को आना चाहिए। ये एक ऐसा भाव है जो हर बच्चे में होना चाहिए, फिर चाहे वो बड़े हों या छोटे, सभी का आदर बहुत जरूरी है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए बच्चों को शुरू से ही आदर सम्मान करने का भाव सिखाना बहुत जरूरी है। बात करते हैं टाइम की, यानी कि टाइम मैनेजमेंट की। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि उन्हें अपना समय कब कहाँ खर्च करना है, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता और उस समय को बर्बाद करना आपके लिए और भी ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक,
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।
5: राम राम दोस्त, राम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। स्मार्ट संस्था के साथ मिलकर एक खास संदेश मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन अच्छी बात यह है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज न करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएंगे और सही उपचार लेंगे तो यकीन मानिए कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसी अपडेट के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।
6: हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: I'm sorry, Nami. मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे प्लीज माफ कर दो।
1: It's over. अब सब कुछ खत्म हो चुका है शेर। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब तुमसे शादी नहीं कर सकती।

0: इज दिशा, मैं 3 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ।
1: सो व्हाट, मैं काम में बिजी था यार, तुम मुझसे मिलना चाहती थी, मैंने तो नहीं बोला मेरी वेट करो।
0: यू नो शैम, इट रियली हर्ट्स।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। चलिए बात करते हैं हेल्थ की। जो कहते हैं सच कहते हैं कि हेल्थ है तो सब कुछ है। आप अक्सर जिम जाते हैं, जिम जाने से पहले किन किन खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, जिम अगर आप जा रहे हैं तो उससे पहले क्या आप खाएं क्या ना खाएं, इसी के विषय में आज हम आपको बताने वाले हैं। उन 5 फूड के विषय में जो आपकी बॉडी को लोहे जैसी मजबूत बॉडी बनाएंगे। जिम में ज्यादा देर तक एक्सरसाइज करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जो हमें प्री वर्कआउट फूड से बड़े आसानी से मिल सकती है। इनसे सेहत भी अच्छी रहती है और आप खुद को फिट महसूस करते हैं। चलिए यही बात डिटेल में जानते हैं। जिम से पहले जरूर खाएं ये फूड। क्या है खास जानकारी, बात करते हैं। जी हाँ, हमें अपने डाइट पैटर्न में तब बदलाव की जरूरत होती है जब हम जिम जा रहे होते हैं। हालांकि जिम के वक्त शरीर को ज्यादा एनर्जी और स्टेमिना की जरूरत होती है, इसलिए जिम करने से पहले प्री वर्कआउट फूड्स को लेने की सलाह दी जाती है। ये फूड्स स्टेमिना भी बढ़ाते हैं और एनर्जी भी डबल करते हैं। प्री वर्कआउट फूड्स हमेशा हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए, जिससे पर्याप्त मात्रा में एनर्जी शरीर को मिल सके। इससे एक्सरसाइज करने में भी अच्छे से मदद मिलती है, साथ ही मसल्स की रिकवरी भी सही तरीके से होती है। इतना ही नहीं, प्री वर्कआउट फूड्स में प्रोटीन और कार्ब्स का संतुलन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों के बीच का सही संतुलन होने से थकान नहीं होती। अगर आप भी जिम जाते हैं तो यहाँ हम आपको कुछ बेस्ट प्री वर्कआउट फूड्स के बारे में बता रहे हैं। ओट्स के विषय में बात करते हैं। ओट्स के बारे में तो हमने सुना ही है। फाइबर, कार्ब्स और अनगिनत पोषक तत्वों से भरपूर ओट्स सेहत के लिए बेहद अच्छा होता है। वर्कआउट से पहले ओट्स खाना फायदेमंद होता है। इससे लंबे समय तक शरीर में एनर्जी रहती है और अच्छे से एक्सरसाइज करने में मदद मिलती है। ओट्स में मौजूद विटामिन बी कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदल देता है। वर्कआउट करने से करीब आधे घंटे पहले अनप्रोसेस्ड ओट्स खाने की हिदायत दी जाती है। अब बात अंडे की। वर्कआउट करने से पहले अंडा खाना काफी फायदेमंद माना जाता है। इसमें अमीनो एसिड के साथ साथ प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है, जिससे वर्कआउट करने में ज्यादा मदद मिलती है। अगर आप जिम जाने के 30 से 40 मिनट तक पहले 1 से 2 उबले अंडे या ऑमलेट खाते हैं तो एक्सरसाइज करने में ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। बात स्मूदी। स्मूदी पोषक तत्वों का एक बड़ा स्रोत है। बेरी स्मूदी के साथ साथ ग्रीन स्मूदी भी काफी फायदेमंद होती है। इसे वर्कआउट से पहले लेने से कठिन एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी मिलती है। इसके अलावा ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो, पत्तेदार सब्जियों की स्मूदी भी ट्राई कर सकते हैं। बात केला की। केले को भरपूर एनर्जी का स्रोत माना जाता है। इसके अलावा केले में कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम के भी अच्छे गुण होते हैं। इससे शरीर

0: नसों और मांसपेशियों को ठीक ढंग से काम करने में मदद मिलती है। केला खाने से डाइजेशन दुरुस्त रहता है। इतनी खूबियों के चलते केला बेस्ट प्री वर्कआउट फूड में से एक है। उबला हुआ चिकन। बात सामने ये आती है कि चिकन को डाइट का अहम हिस्सा माना जाता है। चिकन में मौजूद प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। प्रोटीन मसल्स की रिकवरी में भी मदद करता है। थोड़ी सी काली मिर्च और स्वादानुसार नमक के साथ उबला हुआ चिकन एक अच्छा प्री वर्कआउट फूड में एक है। अब बात करते हैं एनर्जी बार की। जी हाँ, जिम में वर्कआउट करने वालों के पास एनर्जी बार जरूरी होना चाहिए। आप इसे अपने पास स्टोर करके रखने, केमिस्ट दुकान या फिर किसी सुपरमार्केट में इसे आराम से खरीद सकते हैं। एनर्जी से भरपूर एनर्जी बार में कार्बोहाइड्रेट के साथ हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर भी मौजूद होता है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Film making एक creative field है और यदि आप creative सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
6: The world is here.

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो
5: शारदा। हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
6: रोहन अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
5: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
6: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
5: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
6: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
5: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
6: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
5: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
7: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
8: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
7: So, where are you? The world is here at Sharda University.
9: Hi, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.

0: You got to
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
1: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.
4: अकड़ी पकड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड
5: Let's go, boy!

0: पार्टी ओवर गो।
1: हाय मैं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: चोरी देखे।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: अरे सुनीता, कैसे बा मुनिया? नमस्ते आशा दीदी, सब ठीक बा? साफ सफाई के ध्यान रखत आरू ना?
3: जी दीदी,
2: जैसे रहुआ कहल रहनी हर इतवार के साफ सफाई की जिम्मेदारी लेनी हम। जहाँ कहीं भी पानी जमा देखी नी ओकेरा के तुरंत साफ करी नी। जैसे के पानी के ड्रम, कूलर, फ्रिज, ट्रे सब के साफ सफाई करी ले हम।
4: और आसपास कहूं भी टायर नर

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार और स्वागत है आपका टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीबी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी।
2: जी
1: प्लीज कैरी ऑन।
2: थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीबी के सिम्टम्स, यानी टीबी के आसार, जैसे कि 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, खांसी में खून का आना, कमजोरी और थकान लगना, वजन घटना, भूख कम लगना और अधिक पसीना छूटना।
1: और इन सब का मैं बताता हूं सार, मिलिए डॉक्टर से न करें विचार, अगर दिखें टीबी के आसार।
2: जी सर, बिल्कुल करेक्ट।
1: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम में, यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने जा रहे हैं हल्दी, मेथी और सौंठ का एक साथ अगर आप सेवन करते हैं तो शरीर की 5 समस्याओं से तुरंत आपको छुटकारा मिल जाएगा। जी हाँ, हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है। कैसे, आइए जानते हैं इसके कुछ लाभ के बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण के क्या क्या फायदे हैं। तो एक्सपर्ट बताते हैं कि हमारे देश में मसालों का भंडार है। घर की रसोई हो या फिर किसी ढाबे और रेस्टोरेंट की रसोई, हर जगह आपको मसालों की खुशबू आसानी से मिल जाएगी। मसालों का कई मिश्रण ऐसा होता है जो आपके शरीर की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इन मिश्रण में मेथी, हल्दी और अदरक यानी सौंठ का मिश्रण है। मेथी, अदरक और हल्दी के मिश्रण से कई परेशानियों को दूर किया जा सकता है। अब जानते हैं कि अदरक, मेथी और हल्दी से सेहत को होने वाले फायदे क्या क्या हैं। बात सामने आती है कि उल्टी और दस्त में किस तरीके से आराम करता है। अगर आपको उल्टी या फिर जी मिचलाने जैसा अनुभव हो रहा है तो ऐसी स्थिति में अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण फायदेमंद हो सकता है। साथ ही इससे दस्त की परेशानी को कम करने में मदद मिल सकती है। अब बात करते हैं कि हड्डियों को मजबूत कैसे बनाएं। अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक और कई विटामिन का संयोजन होता है जो आपकी हड्डियों की मजबूती को बढ़ावा दे सकता है। नियमित रूप से इस मिश्रण के सेवन से हड्डियों को विकास और मजबूती में मदद मिल सकती है। बात जोड़ों के दर्द में किस तरीके से आराम मिलता है, तो हल्दी, मेथी और अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है जो शरीर की सूजन को कम कर सकता है, साथ ही जोड़ों में होने वाले दर्द से आराम दिला सकता है। इन मसालों की तासीर भी गर्म होती है जिससे मांसपेशियों को रिलैक्स महसूस होता है। अगर आप अपने जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, तो हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन जरूर करें। बात इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें। शरीर की कमजोर इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन कर सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर रूप से मौजूद होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। इससे संक्रमण और वायरल बीमारियों से दूर करने में मदद मिल सकती है। बात कफ की परेशानी को कैसे कम करें। तो जिन लोगों को कफ की परेशानी होती है उन लोगों के लिए अदरक, हल्दी और मेथी का मिश्रण फायदेमंद होता है। दरअसल इन मसालों का मिश्रण फायदेमंद होता है जिससे वात कफ की परेशानी कम हो सकती है, साथ ही अन्य बीमारियां भी दूर होती हैं। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ।
2: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 एफएम सुनो शारदा।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: इस अभियान का आह्वान, यदि है आपको टीबी के लक्षण तो जल्द जांच से ही होगा सबसे तेज समाधान। टीबी होने पर जल्द जांच से उपचार में आती है तेजी और गंभीर बीमारी का खतरा होता है कम। सुरक्षित होता है आपका परिवार और अन्य करीबी जन। कुछ समूहों में टीबी का खतरा अधिक होता है, जैसे वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान और शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित, टीबी रोगी के साथ रहते हों, मधुमेह रोगी, HIV से पीड़ित लोग, तो टीबी के लक्षण होने पर अपने नजदीकी सरकारी या निजी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में निःशुल्क जाँच और उपचार पाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
3: टीबी फ्री इंडिया बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।
2: डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नवजात शिशु के संपूर्ण विकास के लिए दूध पिलाने वाली माँ को खाना चाहिए ये आहार। जो अपने जन्मजात बच्चों का अच्छा विकास देखना चाहती हैं, उन्हें स्वस्थ और पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए। आपके द्वारा किए गए स्वस्थ और पौष्टिक आहार का सेवन आपके बच्चे को उचित मात्रा में सभी पोषण तत्व प्रदान करता है और किसी भी प्रकार के पोषण तत्व की कमी से पीड़ित नहीं होने देता। स्वस्थ और पौष्टिक आहार केवल गर्भ अवस्था के दौरान ही आवश्यक नहीं होता है, बल्कि वो आपके स्तनपान की गुणवत्ता के लिए भी जरूरी होता है। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को अपने सामान्य आहार में उच्च प्रोटीन, कैल्शियम, पोषण तत्व और विटामिन युक्त आहार का सेवन करना चाहिए। साथ ही उन्हें तरल पदार्थ का भी सेवन करना चाहिए। तो चलिए कुछ ऐसे ही खाद्य पदार्थ के बारे में जानकारी लेते हैं, जिनके सेवन से आपके बच्चे के विकास के लिए संपूर्ण पोषण तत्व प्रदान हो सकते हैं। दूध पिलाने वाली महिला को पीना चाहिए दूध। आपके आहार में कैल्शियम को बनाए रखने और उसे बढ़ाने के लिए दूध आवश्यक है। यह आपके बच्चे की हड्डियों के लिए महत्वपूर्ण है और उनकी हड्डियों में उचित कैल्शियम बनाए रखता है। यह आपके बच्चे के शरीर में एनर्जी बनाए रखने में मदद करता है। स्तनपान कराने वाली माँ को पीना चाहिए अधिक पानी। स्तनपान कराने वाली माताओं को कैफीन युक्त और अल्कोहल पेय पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रसायन स्तनपान के माध्यम से आपके शिशु के अंदर भी जा सकते हैं। कैफीन युक्त पेय के 3 कप से अधिक का सेवन करने से माताओं को नींद न आने की समस्या हो सकती है और आपके शिशु में चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। दूध पिलाने वाली माँ का भोजन। बच्चे के जन्म के बाद माँ आहार में खाए हरी पत्तेदार सब्जियाँ। स्तनपान कराने वाली माताओं को हरे पत्ते वाली सब्जियों का उचित मात्रा में सेवन करना चाहिए। हरे पत्ते वाली सब्जियाँ विटामिन और पोषण तत्व जैसे विटामिन ए और कैल्शियम, विटामिन सी, आयरन आदि में समृद्ध होती हैं, जो माँ और बच्चे दोनों के अधिकांश पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। बच्चे को दूध पिलाने वाली माँ को खाना चाहिए संतरा। संतरे में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके सेवन से माताएं संक्रमण से दूर रहती हैं और उनके बच्चों को प्रतिरक्षा प्रणाली बढ़ाने में भी मदद मिलती है। बच्चे को दूध पिलाने वाली महिला को खाना चाहिए साबुत अनाज। साबुत अनाज फोलिक एसिड में समृद्ध होता है। साबुत अनाज सही तरह से कोशिका में वृद्धि के साथ साथ आपके बच्चों के मस्तिष्क के विकास में भी सहायता करता है। फोलिक एसिड पूरक के रूप में चिकित्सक द्वारा एक बार देने की सलाह दी जाती है। साबुत अनाज में मौजूद फोलिक एसिड इन पौष्टिक जरूरतों को पूरा करने में मददगार है। स्तनपान कराने वाली महिलाएं खाएं मछली। सैल्मन मछली DHA से समृद्ध होती है और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी उच्च मात्रा में पाई जाती है। यह आपके बच्चे के मस्तिष्क के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है, हालांकि इसका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: मेरी फिल्मों में आपने देखा ही होगा कि अगर विलन को पीटते हुए आधे में छोड़ दिया जाए तो बाद में विलन बदला लेने जरूर आता है और हीरो के लिए बहुत सारी दिक्कतें खड़ी कर देता है। ठीक ऐसे ही अगर हम टीबी का इलाज अधूरा छोड़ दें तो आगे जाके ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी हो सकता है, जिसका उपचार लंबा और कठिन भी है। इसीलिए पूरा कोर्स ही है पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: क्या हुआ बहू, इतनी खांसी?
2: माजी, मुझे टीबी है।
1: टीबी? और छुपा कर रखा?
2: माजी, मुझे डर था कि कहीं आप मुझे

0: वापस मायके न भेज दे।
1: जाना तो तुझे पड़ेगा, लेकिन मायके नहीं, डॉट सेंटर। टीबी कोई ऐसी बीमारी थोड़े ही है जो छुपाते फिरें। टीबी छूने, साथ खाना खाने या रहने से नहीं फैलती। टीबी मरीज को जरूरत है आपके प्यार की और डॉट